是什么人啊？给他过来，杰达，你今天准备过来吧嘞呢？उन्हें याद रहे सन निकिया जिंदा ते बड़े साके ख्याल करे हो आदेरा निकिया जिंदा कोल बाले ना ए उस बाबल दाई एक समान है एक स्वाधीनता है बाल किस बाप पे जिन हो जाया कल भी अलकी की शीत ख्याल करे दादी माँ आख दिए देखे हो जालमान दे अदालत विच पेश होने अडोल रहे जालमान दे अदालत विच पेश होना है अडोल रहे इन पुल जाए उत्तर किंदे हो कि जवाब सी बालकिस बाप पे जिन हो जाएगा एक हरूप मैं इतिहासक साक्षी के विस्तार में किन नहीं जानना चाहता किसी पहले भी हम सुन लेंगे अगले भी सुन एक कंसेप्ट वाल बदना चाहना एक विश्वास है अंदर ला जेड़ा बल दे रहे हैं निकलिया जिंदगी बोले तुहानू पता ही नहीं तुसी साडियां शकलां साडे वजूद साडियां उम्र देख के ही अंदाजा लगा रहे हो खौरे डोल जा रही है मौत का खौफनाक चेहरा इन्हू डरा गए खौफ ज्यादा हो जाएंगे तुम यह नहीं जानते जेड़ा साडे कोल बल है वो साडा अपना नहीं साडे बापू है साडे बापू जिहड़ा आखदा है

तो बल बापू दे, तो उस बापू के बल से गौरव करने वाले, उस बल संभाल लेने वाले, उस विरसे पा लेने वाले निकियां जिंदा वड्डे साके कर सकते हैं। सदियां बीत जान तो बाद भी उन्होंने सामने सिर झुकते हैं, उन्होंने बापू के बल विरसे वांग संभाल रखे है। तो भले अज मैं पूछना चाहना, वो बापू का बल उन्हें वक्त ते खालसे नू भी दिता, क्योंकि तो खालसे नू भी वो हक मिलिया जो साहबजादा अजीत ते जुझार नू मिलिया, जो साहबजादा जोरावर सिंह ते फतेह सिंह नू मिलिया। वो आखदे ने बल किस बापे जिन हो जाए, मैदानी जंग विच तन दे टुकड़े करा पुरजा पुरजा कट मरे दी शरत पूरी कर, सरहंद दियां दीवारां विच चिने जाके ते हक मिलिया। मैं कहा कि किसी यदि खुशकिस्मत हो गलीतियां तो बैठ के ही हक मानना चाहते हो, यदि खुशकिस्मत हो ऐसी एयर कंडीशन कारा तो एयर कंडीशन रूमों में बैठ के ही वो हक लेना चाहते हो, जेड़ा हक किसी ठंडे बुरज रास्ता कट के, जेड़ा हक किसी कालिया बोलिया अंधेरिया रातों विच सरसा नदी के वहना नाल जूझ के मिलता है, वो हक असी भी लेना चाहते। बड़े गौरव नाल ऐनिक गल आखते हैं, असी गुरु गोबिंद सिंह साहिब के पुत्र दुरुस्त केवल साहबजादा अजीत सिंह के जुझार सिंह नू ही बल नहीं मिले, केवल साहबजादा जोरावर सिंह ते फतेह सिंह नू ही वो बल नहीं मिले, केवल उन्होंने नहीं मिले। ये गल वक्ती है, उन्हें उस बल को संभालिया तो दुनिया को दस दिता बापू का बल की होंगे, साबित कर दिता बल इस बापे का की है, इस बाप का बल की दुनिया ने देख लिया। सदियों तो बाद भी अज इतिहास के पन्नियां दियां कुछ लाइनां विचों चमक चमक वो बल पिया दिस रहा दुनिया के लोगों, पर एक ख्याल करो उन्होंने संभाल लिया दिखा दिता, पर एक बल तुहानू भी मिले। गुरु ने आवाज दे के दिता, क्या किया

20 रुपया थे। उन्हें आखिया मैनू अज के आगुआवां नूं यह आदत नहीं कि जो मेरे को शक्ति होवे केवल मेरे पुत्रां लई। मैं अपनी जायदाद अपनी संपदा अपने तखत अपने सिंघासन केवल अपने पुत्रां लई राखवें नहीं करदा। मैं जिहड़ा बल उन्हां नूं दित्ता है वह बल तुहाडे लई वी राखवां। और एक ख्याल करियो 300 साल बाद अज तुसी फिर उस बापू के दरबार में हाजिर होना है। पिछले दिहाड़े में कल की 300 वरे बाद अज तुसी फिर उस बापू के दर से हाजिर होना है जिस बाप का बल लैके तुरे सौ। बापू पूछेगा बल किथे गए, अपनी ढोल में निगाह मार के जायो उसे सब मंगे थे आपके अंदर। आज संसार का आम बापू जे किसी अपने बच्चे ने थोड़ा जा सरमाया दे देवे ना तो कुछ वर्या बाद बापू को वापस आए वेखदा है इन्हू कि दे के तोरिया इन्हें की वादा किया है किसी गुआच नहीं आया। ਤੁਸੀਂ 300 ਵਾਰਾ ਬਚ ਜਾਣਾ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਅਨੰਤਪੁਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ 300 ਵਰੇ ਬਾਅਦ ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ। ਮੇਰਾ ਮਾਰਕ ਦੇ ਚਾਹ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾਓ ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਮਾਰਕ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਵੱਲ ਰੱਬ ਵੱਲ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਆਕਰ ਮਾਰੇ

और मरी। हालांकि वो फिर दीजे वाला बल जरा जरा बाबा जोरावर सिंह नु मिले जेड़ा बाबा फतेह सिंह नु मिले उस बापू ने सानू भी दिता सी। उस फिर दीजे कान ना कीजे वाला बल सानू मिल गया। बापू ने आवाज दे के आख्या मोग्रह तणित मणित सिर लो तन है सब ही नहीं को एक दियो मैं सार देता। आज साढ़े को बालक की ओकलीज है। मैं सवेरे भी गल कही जेड़ा बालक तेज जोरावर सिंह फतेह सिंह कोल है हुने जिक्र कर रहे सिंह भाई साहब वक्त की हकूमत के सामने सिर ना चुके इसलिए उस नीवी बारी विच्चों भी कदम पै ना पा दिते सिर ना चुके तो भोलिया अपने अंदर झात मार तेरे को बल है तू तो सख ना होया फिरना इस बल को दर दर दा तखत तखत दा सिंघासन सिंघासन दा गुलाम होया जरा बापू का बल सी वो कितने जरा बल जोरावर सिंह से फतेह सिंह कोल है वो हाकते रहना चाहे कि मैं नहीं आखा मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब का पुत्र पर पता ही वो किस फर्क से मिलया जब वह खालसा रहे न्यारा को शब्द जब लग तो ना तब लग आया था जब लग खालसा रहे न्यारा इशक तब लग तेज दियो में सारा ते नाल ही एक वार्निश भी थी एक वार्निश वो वार्निश थी जब एक जहे विप्रन की रही मैं ना करूं उनकी पति हम तो मैं पिछले जहां चलती थी विप्रन की रीत दे जुम्मेवार विपरन की रीत लागू करने के दावेदार जड़े ने उन्होंने गल वक्री बिच तू बैठा है उन्होंने गोद बैठा बलहीन तो आप ही हो जाने आप ही बलहीन हो जाए पर अफसोस इस गल का है कि मार्च करके जा रहे हैं आनंदपुर से अपनी झोल वाल निगल नहीं मार रहे जो कुछ दिता सी बापू ने वो की लैके जा रहे हैं बापू ने पूछना जदों आनंदपुर पुजेगा उत आवाज दे के पूछा जाएगा जरा मैं तेज दी मैं सारा सी कि खाली झोल शर्मिंदा करेगा। हालांकि गुरु ने आवाज देते आख्या जिन्नी कमी नाहे गुण ते कमड़े विशाल छद दे ओ कम जिन्ना कमां नाल गुण चले जाने मत तेन बापू के दरबार में शर्मिंदा होना पड़ेगा। जिन्नी कमी नाहे गुण ते कमड़े विशाल मत शर्मिंदा होवे तीवें साईं दे दरबार जिस दिन 300 वरे बाद आनंदपुर गया ग्यों बापू ने पूछना है तो फिर कितने वो बल कितने वो पलिया जेड़ा बल मैं जोरावर सिंह दिता सी तेनू भी दिता जेड़ा फतेह सिंह दिता सी वो तेनू भी दिता उस बल के विरसे को संभाल के दुनिया अंदर अज तक इतिहास का सुनहरी पन्ना बन बैठे ने तू अपना इतिहास जो चितर रहा है रोज चितर रहा है केवल 300 साल पूर्व के मनाल के संबंध की जड़िया चार लाइन इतिहास दियां चितर रहा है उलीक रहे हैं वो की ने कभी आपके पर निगाह मारे हो उन्नी देर गुरु नहीं जो मिलता जिनी देर आप नहीं सवार दे गुरु ने आवाज देते आखे आप सवारे मैं मिले जिनी देर आप सवार के नहीं जावे रोड मार्च करके चले जाओ मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा जो गुरु कहता है स्पष्ट कर दिया जिसने आप सवार के नहीं जावे मार्च की क्या कुछ नहीं बनना
भूति आखदा आप सवारे मैं मिलिया सुख होए जे तू मेरा हो रहे सब जग तेरा होए। बाणी गुरु दा तू तो गुरु वालों मुंह मोड़ के पदवियां दबने बैठा, तू तो गुरु वालों मुंह मोड़ के संसारिक सिंघासना का गुलाम बने बैठा। तेन उसे ख्याल ही नहीं आता कि मैं दिन ब दिन पूरी कम्युनिटी पूरी कौम पूरे पंथ अखवान वाले किसी विपरन की रीत की गोदी में बिठा लिया। नतीजा निकलता बाल तो सख ना हो रही। जिस बाबा जोरावर सिंह का दिन मनाना आया उन्होंने बापू के बल न संसार अंदर साबित किया। पहला ओह जिहा मन बना ओहदी दृढ़ता लै ओहदी विशालता ते ओहदी चढ़दी कला मन विच ले जा ते फिर लै के गुरु दसम पातशाह के दरबार में 300 साल बाद हाजिर। फिर बेशक पढ़ी

जे तू संसार तो पार होना तो यह मद भुल के भी ना पी, भुल के भी ना पी। मैनू मद तो ख्याल आ गया, खनूर साहब मेरा चला गया। उत्थे एक मलूके नाम का चौधरी से, उन्हें मिर्गी का रोग हो गया ज्यादा पीण करके। अजकल भी गुरमुख कई तरह दन सन बीमारियां ने, उन्होंने बीमारियों का जो मूल मैं समझता वह रेहड़ी तो खाना, रेहड़ी तो आप रेहड़ियों तो बड़ा खाने। वन सुवन्ना ना कोई भांडा माजदा ना कोई धोदा, वो तो सिगरटा वाले खाधी जाते हैं, उत्थे तंबाकू वाले खाधी जाते हैं। आप केवल तो केवल खाण तक सीमित, सानू यह नहीं पता कि यह भांडा धोता कि नहीं धोता। तो मैनू किसी ने पूछा भी ज्ञानी जी जेडे इस तरह के बंदे ने इन्हों बारे तुम की कहोगे भी जी थां थां तू खाधी जाते हैं। मैं क्या भी मैं तो यह कहांगा कि उन्होंने अपनी कमीज के उपर एक बैनर ला लेना चाहिए, यूज भी मैनू वरतो वो बंदे की। आप पीते रखे ना थां थां ते बाहर लिखा भी यूज भी मैनू वरतो, भावें कोई कागज पा जाए भावें कोई होर चीज पा जाए। उन्होंने बंदियों के पेट न पेट ना आखो, उन्होंने चाहिए भी पेट से लिखा लेने यूज भी मैनू वरतो, जितों मिले खा लिया। गुरु के सिखो तुम कहना ज्ञानी जी तुम कर दौ कथा के पासे चलेगा नहीं गुरमुखो। रैत नामे के बोल ने जय तय का देवे प्रसाद, मेरा सिख नहीं आज जुगाद। जिहड़ा जिथों कितों मर्जी खा लेना वह मैनू प्यारा गुरसिख नहीं। जिहड़ा साडा पेट है ना हरिमंदर जी, हरिमंदर गुरु की बाणी लिखा हरिमंदर, यह शरीर है गुरु के सिखा। जिहड़ा तेरा शरीर यह रब का घर है, ते आप दरबार साहब मूंगफली की छिलां खिला रही ने, कदे आप पाटे कागज सुटे ने, उत्थे हरिमंदर विच नहीं। इस हरिमंदर के जिथों कितों मिले प्यारे ना पाए रब का घर है, रब का घर। दो विचार, उन मिर्गी का रोग लग गया, गुरु चरणा चाया पातशाह बड़ा परेशान है कृपा कर। गुरदेव कह लगे चौधरी साहब लुकिया तू शराब छड, तेरे ते गुरदेव कृपा करेंगे तेन दौरा नहीं पाएगा। साड़ी मन अपनी छड, मन नहीं हुक्म कदे अभिमाने, हुक्म नू मन ते अपने चौधरी पुणे की आकड़ फाकड़ छड। इतिहास कहिंदा भी गुरु प्यारे ने 16 साल शराब नहीं पीती, 16 साल बिल्कुल तंदुरुस्त नौ पर नौ। कहिंदे ने 16 सालों के बाद सौण का महीना आया, उहदे पुराने मित्र मिले। मैं जदों साखी पढ़ी ना तो मैनू इउं जाके पुराने मित्र नहीं मिले, पुराने जम मिले। मित्र नहीं, मित्र वह हुंदा जिहड़ा चंगे पासे लावे, चंगे पासे दी मदद करे। जिहड़ा बुरे पासे लाउंदा भावें वेखण नूं बंदा जापदा पर गुरमुख है जाम, उहनूं मित्र ना जा, क्योंकि जम्मण ते मरण का गवाह बन गया, हुण मरण का कारण बन जाएगा। उहदे पुराने पुराण यार आए, पुराने मित्र आए, कहण लगे चौधरी साहब तू तो मर गया यारा, किन्ना चिर हो गया आपां कट्ठी पीती नूं, ते वेख ला ठंडी हवा चलती एक मनोहरी ते आपां अज पीए, मत मरी गई। गुरु का हुक्म भुल गया, शराब पीती। जिथे गुरु प्यारू फरूर साहब बस स्टैंड है ना, उथे उहदा घर सी मलूके चौधरी का। जदों बंदा पी रहा है ना उदों बंदा भूतना बन जाता, भूतना चवाड़े ते चढ़िया, ते जिथे मल खाड़ा गुरुद्वारा साहब बनया इत्थे गुरदेव बच्चों की कुश्तियां करा रहे सन, बिल्कुल लागे है मल खाड़ा बस स्टैंड। कोठी चढ़ के आवाज मारी, कहन लगा तपा जी अज नहीं जे रहा गया,

तह डूबी अले मन एक न चेतस मूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाऊ ना हो जति सती नहीं पड़िया मूर्ख मुगदा जन्म भया प्रणवत नानक तिन की शरणा जिन तू नाही विसरिया आसा महला पंजवा भई प्राप्त मानुख देहुरिया गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया अबर काज तेरा कितै न काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजाम लाग पवजल तरन कै जन्म ब्रिथा जात रंग माया कै रहाऊ जप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साध ना जानिया हर राया।

पातशाही दसवीं कब्यो बाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ दय रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दोष्ट सब है तुम कहावहु आप हाथ दय मोहि बचावहु सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सब है कर तारा मोह रक्षा निज कर दय करे आए सब बैरन को आज संगरे आए पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम है शाड कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दै मुझे भरया है मरण काल का त्रास निभर आए हू जो सदा हमारे पछा सरी आस तुझू करे हो रक्षा राख ले हो मोहे रखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर बिशन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जबन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जबन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जबन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझे हो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी शिव कन को शिव गुण सुख दियो सतरन को पल मोबद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछानै कट कट के बट बट की जानै जब उध करख करा कर तारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब या करख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देह तर सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अरयालम निरंकार निर्विकार निरलंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूल उचारत भेदा जाको भेव न पावत भेदा ताको कार पाहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा सेवो निरंकार का चीनत नह पेव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत पेन पेन तोह देती तुमरा लखा न जाए पसारा किहे बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कहीं पूपा अंडज जेरज से तज गिने उतपुज खान बहोर रच दीनी कहूं फूलरा जाहव बैठा कहूं सिमट पयो शंकर कैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए चंपव आद जुगाद स्वरूप सुजंपव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संग्रो दुष्ट जिते उठ बत उत पाता सकल मलेश करो रण खाता जे अस तुज तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखत हवै मरे पुरख जबन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते आए हैं ताके काल निकट नह आए हैं रक्षा हुई ताहे सब काला दोष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहि नहि रहो
ताके ताप तनक मोह हरे हो, रिद्ध सिद्ध कर मोह सब होई, दुष्ट शास्व सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहे उभारा, जिन नार नाम तिहारू कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा।

जाय सवैया। पाएं गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आने। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक ना माने। सिमरत शास्त्र भेद सब है, बहु भेद कहे हम एक ना जाने। सरी असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहे सब तोहे बखाने। दोहरा

सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गा बणाइयां शब्दों ता गावो हरि केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवारना। सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारी कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाहीं कर तेरा है करता तेरा है सब किछ है जिस देहे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिन कै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सचे साहिब क्या नाही कर तेरा है। साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो जिस दियां ये वडियाइया। कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सपा गए शब्द वाजे कला जित कार उतारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कह लागे कह नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे। आनंद सुनहो वडभागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सची बाणी संत साजन भये सरसे पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे आ भार पूरे

तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पुंचै तिसका होए उधारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख उर धारो तम संसार चरण लग तरियै सब नानक ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंजवां।

0: जी की फतेह फतेह
1: वाहेगुरु जी का खालसा
0: वाहेगुरु जी की फतेह फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
2: केवू दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाने लई तुसी सानु सुझाव दिंदे रहोगे।
3: ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ। ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3374 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3375।
4: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com।
5: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

जदों पाई पाई पिछे दौड़दा भाई तो बगैर होर कोई नहीं दौड़दा। दुख पवे जदों पाई पाई पिछे दौड़दा।

सेवक जन बने ठाकुर लिव लागे, जो तुमरा जस कहते गुरमत तिन मुख पाद सबागे रहा। टूटे माया के बंधन साहे, हर राम नाम लिव लागे, हमरा मन मोयो गुरमोहन हम विषम कई मुख लागे। सगली रह कोई अंधियारी, गुर किंचित कृपा जागे, जन नानक के सब सुंदर स्वामी, मोय तुम सर अवर न लागे। देव गंधारी मेरो सुंदर कहो मिले कित गली, हर के संत बताओ मार्ग, हम पीछे लाज चली रहाओ, प्रेय के बचन सुखाने ही रहे, ये चाल बनी है कली। लतरी मदरी ठाकुर पाई, ओ सुंदर हर कुल मिली, एको प्रयो सखिया सब प्रेय की, जो पावे कृपा बली। नानक गरीब क्या करे बिचारा, हर पावे कित राहे चली। देव गंधारी मेरे मन मुख हर हर हर बोली है, गुरमुख रंग चलू ले राती, हर प्रेम पीनी चोली है रहाओ, हों फिरो दीवानी आवल बावल, किस कारण हर टोली है, कोई मेल है मेरा प्रीतम प्यारा, हम किसकी गुलगोली है। सतगुरु पुरख मनाओ अपना, हर अमृत की चोली है, गुरु प्रसाद जन नानक पाया, हर लादा देह टोली है। देव गंधारी अब हम चली ठाकुर पैहार, जब हम शरण प्रभु की आई, रात प्रभु पावे मार, रहाओ लोचन की चतुराई उपमा, ते बैसंतर जार, कोई पला कहो पावे बुरा कहो, हम तन दियो है तार, जो आवत शरण ठाकुर प्रभु तुमरी, तिस रातो कृपा थार, जन नानक शरण तुम्हारी, हर जियो राखो लाज मुरार। देव गंधारी हर गुण गावे हौ किस बलिहारी, देख देख जीवा साध गुर दर्शन, जिस हृदय नाम मुरारी रहाओ, तुम पवित्र पावन पुरख प्रभु स्वामी, हम क्यों कर मिले जुठारी, हमरे जिए होर मुख होर होत है, हम कर्म ही कूड़ियारी, हमरी मुदर नाम हर स्वामी, हृदय अंतर दुष्ट दुष्टारी, ज्यो पावे त्यों राखो स्वामी, जन नाम शरण तुम्हारी। देव गंधारी हर के नाम बिना सुंदर है नट्टी, ज्यों बेतुआ के कर पूत जमत है, तिस नाम परयो है तृप्ती रहाओ, जिनके हृदय नाहि हर स्वामी, ते बिगड़ रूप बेरक्ती, ज्यों निगुरा बहु बाता जाने, ओह हर दरगह है प्रस्ती, जिनको दयाल हुआ मेरा स्वामी, तिना साध जना पग चकती, नानक पतित पवित्र मिल संगत, गुर सतगुर पाछै चुकती। छक्का पहला देव गंधारी महला पंजवा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, माई गुर चरणी चितलाई है, प्रभ होए कृपाल कमल प्रगाते, सदा सदा हर त्याय रहाओ, अंतर एको बार एको, सब में एक समाय है, काट अब घट गया सब थाई, हर पूरन ब्रह्म दिखाई है, पुस्तक करें सेवक मुन के ते, तेरा अंत ना कटू पाई है, सुख दाते दुख पंजन स्वामी, जन नानक सद बल जाइए। देव गंधारी माई होन हार सो होई है, रात रहो रचना प्रभ अपनी, कहां लाभ कहां खोई है रहो, कह फूले आनंद बिखे, सोग कब हसनो कब रोई है, कब हूँ मैल परे अभिमानी, कब साधु संग तोई है, कोई न मेटे प्रभ का किया, दूसर नाही अलोई है, कहो नानक तिस गुर बलिहारी, जिन प्रसाद सुख सोई है। देव गंधारी माई सुनत सोच कै डरत, मेर ते तजो अभिमाना, शरण स्वामी की परत रहाओ, जो जो कहे सोई पल मानो, नाहे ना का बोल करत, निमख ना बिचरो हिये मोरे ते, बिसरत जाई हौ मरत, सुखदाई पूरन प्रभ करता, मेरी बहुत इयानत जरत, निर्गुण करूप कुल ही नानक, हौ अनद रूप स्वामी परत। देव गंधारी
मन हर कीरत कर सदहू, गावत सुनत जपत उधार है, वर्ण अवरना सबहू रहाओ, जैसे उपजियो कहीं समायो, ए विद जानी कबू, जहाँ जहाँ एक देही सारी रह न पायो कबू, सुख आयो कह परम विनाशी, कृपाल हुए प्रभ जबू, कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ साध संग तज लभू, देव गंदारी मन जो अपने प्रभ पावो, नीचो नीच नीच अतनाना होए गरीब बुलावो रहाओ, अनेक अडंबर माया के बिरते ताचो प्रीत कटावो, जो अपनो स्वामी सुख माने ताम है शोभा पावो, दासन दास रेण दासन की जन की टहल कमावो, सर्व सुख बढ़ियाई नानक जीवो मुखो बुलावो, देव गंधारी प्रभ जी तो प्रसाद प्रम डार्यो, तुमरी कृपा ते सबको अपना मन में यह विचार्यो रहाओ, कोट पराध मिटे तेरी सेवा, दर्शन दुख उतार्यो, नाम जपत महासुख पायो, चिंता रोग विदार्यो, काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग विसार्यो, माया बंद काटे कृपा निध, नानक आप उधार्यो, देव गुणारी मन सगल स्यान रही, कर्म करावन हार स्वामी नानक कोट गही रहाओ, आप मेक पे शरणाई एह मत साधु कही, प्रभ की आज्ञा मान सुख पाया परम अंधेरा नहीं, जान प्रवीण स्वामी प्रभ मेरे शरण कुमारी अही, किन मैं थाप थापन हारे कुदरत की मना कही, देव गंधारी महला पंजवा हर प्राण प्रभु सुख दाते, गुर प्रसाद काहू जाते रहाओ, संत तुम्हारे तुमरे प्रीतम तिनको काल न खाते, रंग तुम्हारे लाल कहे हैं राम नाम रसमाते, महाकिल भी कोट दोख रोगा प्रभ दुष्ट तुम्हारी हाते, सोत जाग हर हर हर गाया नानक गुर चरण पराते, देव गंधारी पंजवा

ता दीना नाथ प्राण पत पूरन पव जल उधरन हारा। आप विवाद भगत जन सेवक ताकी बिखे अधारा। तिन जन की तूर बांचे नित नानक परमेश्वर देवनहारा। देव गंधारी महला पंजवा तेरा जन राम रसायन माता। प्रेम रसा निज जा को उपजी सोध न कतहु जाता रहाओ। बैठत हर हर सोवत हर हर हर रस भोजन खाता। अर्थ अर्थ तीरथ मज्जन कीनो साधु तूरी नाता। सफल जन्म हर जन का उपजिया जिनकीनो सौत विदाता। सगल समूह लै उदरे नानक पूरन ब्रह्म पछाता। देव गंधारी महला पंजवा माई दुर्बिन ज्ञान न पाइए। अनेक प्रकार सिरक बिल्ला के मिलत नहीं गोसाइए रहाओ। मोह रोग शोग तन बांधियो बोह जोनी फरमाइए। टिकर न पावे बिन सत्संगत किस आगे जाए रुआइए। करे अनुग्रह स्वामी मेरा साध चरण चित लाइए। संकट कोर कटे खिन पीतर नानक हर दर्श समाइए। देव गंधारी महला पंजवा ठाकुर होए आप दयाल। पई कल्याण आनंद रूप होई है उबरे बाल गोपाल रहाओ। दो कर जोड़ करी बेनंती पार ब्रह्मन से आया। हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मिटाया। वर नारी मिल मंगल गाया ठाकुर का जयकार। कहो नानक जन को बल जाइए जो सबना करे उधार। इको अंकार सतगुर प्रसाद देव गंधारी महला पंजवा। अपने सतगुर पै बिनो कहया पै कृपाल दयाल दुख पंजन। मेरा सगल अंदेसरा गया रहाओ। हम पापी पाखंडी लोभी हमरा गुण अवगुण सब सहया। कर मस्तक तार साज निवाजे मोह दुष्ट जो कहया। पर उपकारी सर्व सधारी सफल दर्शन सह जया। कहो नानक निर्गुण को दाता चरण कमल उर्धरया। देव गंधारी महला पंजवा अनाथ नाथ प्रभ हमारे शरण आयो राखन हारे। रहाओ सर्व पाप राख मुरारे आगे पाछे अंति वारे। जब चितो तब तुहारे उन समार मेरा मन साधारे। सुन गावो गुर बचनारे बल बल जाओ साथ दरसारे। मन में राखो एक असारे नानक प्रभ मेरे करने हारे। देव गंधारी महला पंजवा प्रभ यह मनोरथ मेरा कृपा निधान दयाल मोह दीजे। कर संतन का चेरा रहाओ प्रातः काल लागो जन चरनी। निष्बासर दर्श पावो तन मन अर्प करो जन सेवा रतना हर गुण गावो। सास सास सिमरो प्रभ अपना संत संग नित रही है। एक आधार नाम तन मोरा अनज नानक एह लही है। राग देव गंधारी महला पंजवा करती जा इक ओंकार सतगुर प्रसाद। मीता ऐसे हर जियो पाए छोड़ न जाए सब ही संगे। अंदिन गुर मिल गाए रहाओ मिलियो मनोहर सर्व सुखैना। त्याग न कथू जाए अनक अनक पांत बहु पेखे। प्रिय रोम ना तम सर लाए मंदर पाग शोभ द्वारे अनहत रुण चुन लाए। कहो नानक सदा रंग माने गृह प्रिय सीते सद थाए। देव गंधारी महला पंजवा दर्शन नाम को मन आखे। प्रम आयो है सगल खान रे आहे परयो संत पाठे रहाओ। किस हो सेवी किस आराधी जो दिसे सो गाचे। साध संगत की सरनी परिय चरण रेन मन बाचे। जुगत ना जाना गुण नहीं कोई महादुत्तर माए आचे। आए पयो नानक गुरचरनी तो उतरी सगल दुराचे। देव गंधारी महला पंजवा अमृता प्रिय बचन तुहारे अति सुंदर मनमोहन प्यार।

उधारियो, प्रभु गुण गाए बिखे बन तरिया, कुलहे समूह उधारियो, चरण कमल बसिया रुद पीतर, सास गिरात उचारियो, नानक ओट गही जगदीशर, पुने पुने बलिहारियो। राग देव गंधारी महला पंजवा का चौथा, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद।

अगम अगम्मा तव महिमा मन जीवे सुन तो चार आश्रम चार दरंगा मुकत पे सेव को गुर शब्द दृढ़ाया परम पद पाया द्वितीय गए सुख हो कहो नानक पल सागर तरिया हर निज पाई सहजो राग देव गंधारी महला पंजवा कर

प्रमत हौ तुम प्रमो ना पाई रवियारे रविया सर्वथान जो बैसंतर कास मझार बिन संजम नहीं कार्य सार बिन गुर ना पावे गो हर जी को द्वार मिल संगत तज अभिमान कहो नानक पाए हैं परम निधान देवगंधारी महला पंजवा जानी ना जाई तासी दास रहाओ कह पेखारो हौ कर चतराई बिस्मन बिस्मे कहन कहात गण गंधर्व सिद्ध अर साधिक सुर नर देव ब्रह्म ब्रह्मादिक चतुर वेद उचरत दिन रात अगम अगम ठाकुर आगाद गुण बेअंत बेअंत पन नानक कह न जाई परे परा देव गंधारी महला पंजवा त्याय गाय करने हार पौ नाही सुख सहज आनंदा अनिक कोही रे एक समार रहाओ सफल मूरत गुर मेरे मत है जब तक देखो तब तक हाथ है चरण कमल मेरे प्राण आधार समरथ अथा बड़ा प्रभ मेरा कट कट अंतर शायद नेरा ताकि शरण आसर प्रभ नानक जाका अंत ना पारावार देव गंधारी महला पंजवा उल्टी रे मन उल्टी रे सात क्यों कर उल्टी रे झूठे की रे झूठ परीत छुटकी रे मन छुटकी रे सात संग न छुटकी रे रहा जो काजर पर मंदर राख्यो जो पैसे का लूखी रे दूरों ही ते पा गयो है जिस गुर मिल छुटकी तृप्ति रे मांगो दान कृपाल कृपा निध मेरा मुख सात संग न जुटती रे जन नानक दास दास को करियो मेरा मूंड साध पगा हेठ रुलती रे राग देव गंधारी महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब दिन के समरथ संत बिठले हो बल बल जाओ गावन पावन संतन तोरे चरण ओवा के पाओ रहाओ जात न बासन सहज केल करना मैं एक अनंत अनुपे खाओ रिद्ध सिद्ध निज कर कल जग जीवन सर्वनाथ अनेक कहनाओ दया मया कृपा नानक कहो सुन सुन जस जीवाओ एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग देव गंधारी महला नामा यह मन नैक ना कहो करे सीख सिखाए रहो अपनी सी दुर्मत से ना डरे रहो मद माया कह पयो बावरो हर जस

उतरे सर पर पंच जगत को ढके अपनो उदर पर है स्वान पूछ जो होए न कूदो कहो न कान तरे कहो नानक पद राम नाम नित जाते काज करे देव गंधारी महला नाम सब किस जीवत को व्यवहार मात पिता पाई सुत बंधक अर्पुन गृह की नार रहो तन से प्राण होत जब न्यारे तेरत प्रेत पुकार आब धरी को ने राख कर से देश निकार मृग तृष्णा जो जग रचना यह देखो हृदय विचार कहो नानक पज राम नाम नित जाते होते उदार देव गंधारी महला नावा।

इस अंक काल संगीन को ए अचरज है रीत, मन मूरख अज हूने समझत सिख गए हारे नीत, नानक पौजल पार

0: क्रिया सगल बतरिया बिरख इक तरिया बहु बंदे परिया फिर साब सफरिया जय कीर्तन हरिया नानक सरनरिया। इको ओंकार सतगुर प्रसाद राग बिहागड़ा महला नावा हर की गत नह को जाने जोगी जति तपि पटहारे और बहु लोग सियाने रहा छिन में राव रंग को करी राव रंग कर दारे रीते परे परे सखनावे यह ताको व्यवहारे अपनी माया आप पसारी आपे देखन हारा नाना रूप तरे बहुरंगी सब तेरे न्यारा अगनत अपार अलख निरंजन जे सब जग परमायो सगल कर्म तज नानक प्राणी चरण ताही चितलायो। राग बिहागड़ा संत महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर नाम से आई है मेरी जिंदड़िए गुरुमुख नाम अमोले राम हर रस दीदा हर मन प्यारा मन हर रस नाम चकोले राम गुरमत मन ठहराई है मेरी जिंदड़िए अनत ना काहू डोले राम मन चिंदियाड़ा फल पाया हर प्रभु गुण नानक बाणी बोले राम गुरमत मन अमृत उठड़ा मेरी जिंदड़िए मुख अमृत बैन अलाए राम अमृत बाणी भगत जना की मेरी जिंदड़िए मन सुनिए हर लिव लाए राम चिरी विचुना हर प्रभ पाया गल मिलिया सहज सुपाए राम जन नानक मन आनंद भया है मेरी जिंदड़िए अनहत शब्द बजाए राम सखी सहेली मेरी आ मेरी जिंदड़िए सखी सहेली मेरी आ मेरी जिंदड़िए कोई हर प्रभ आम मिलावे राम हौ मन देवो किस अपना मेरी जिंदड़िए हर प्रभ की हर कथा सुनावे राम गुरमुख सदा आराध हर मेरी जिंदड़िए मन चिंदेड़ा कल पावे राम नानक पज हर शरणागति मेरी जिंदड़िए वड पागी नाम ते आवे राम कर कृपा प्रभ आए मिल मेरी जिंदड़िए गुरमत नाम प्रगासे राम हौ हर बाज उगीनिया मेरी जिंदड़िए ज्यो जल बिन कमल उदासे राम गुरपुरे में लाया मेरी जिंदड़िए हर सज्जन हर प्रभ पासे राम तन तन गुरु हर दसिया मेरी जिंदड़िए जन नानक नाम बिगासे राम। राग बिहागड़ा महला चौथा अमृत हर हर नाम है मेरी जिंदड़िए अमृत गुरमत पाए राम हौ में माया बिखे मेरी जिंदड़िए हर अमृत बिख ले जाए राम मन सुखा हया होया मेरी जिंदड़िए हर हर नाम ते आए राम हर भाग वडे लिख पाया मेरी जिंदड़िए जन नानक नाम समाए राम। हर तेती मन वेदिया मेरी जिंदड़िए ज्यो बालक लग दुद कीरे राम हर बिन सांस ना पाई है मेरी जिंदड़िए ज्यो चात्रिक जल बिन तेरे राम सतगुर सरणी जाए पाओ मेरी जिंदड़िए गुण दसे हर प्रभ केरे राम जन नानक हर मिलाया मेरी जिंदड़िए कर वाजे शब्द कनेरे राम मन मुख हो मैं विछड़े मेरी जिंदड़िए
1: दर्शन करना।

ते श्रवण पले शोभनीत है जिंदगी हर कीर्तन सुने हर तेरे राम सो सीत पला पवित्र।

काम है ते हस्त पुनीत पवित्र है मेरी जिंदगी ये जो हर जस हर हर लेखे राम तिस जन के पग नित पूजी है मेरी जिंदगी ये जो मार्ग कर्म चले थे राम नानक तिन मितो वारिया मेरी जिंदगी ये हर सुन हर नाम मने थे राम तरस पाताल आकाश है मेरी जिंदगी ये सब हर हर नाम से आवे राम पौन पानी बैसंतरो मेरी जिंदगी ये नित हर हर हर जस गावे राम वाण तृण सब आकार है मेरी जिंदगी ये मुख हर हर नाम से आवे राम नानक ते हर दर पहनाया मेरी जिंदगी ये जो गुरमुख भगत मन लावे राम बिहागड़ा महला चौथा जिन हर हर नाम ना चेते हो मेरी जिंदगी ये ते मनमुख मूड

जो मनुख पाप लुभाने राम जन नानक गुर मिल उबरे मेरी जिंदड़िए हर जप हर नाम समाने राम सब जाए मिलो सतगुरु को मेरी जिंदड़िए जो हर हर नाम दृढ़ावे राम हर जप दिया अखी

तो ऐसा हर निकते भी है मेरी जिंदगी, तो ऐसा हर निकते भी है मेरी जिंदगी, जो सब तू साहेब वड्डा राम, जिन्नी एक मन एक आराध्या मेरी जिंदगी, तिना नाही किसे दी किस चड्डा राम, गुर सेविया गुर सेविया हर महल पाया मेरी जिंदगी, चक मारन सब निंदक संडा राम, जन नानक नाम ते आया मेरी जिंदगी, तुर मस्तक हर लिख

जब हर हर कृष्णा जाए राम जिस दया करे मेरा पार ब्रह्म मेरी जिंदड़िए किस मन नाम पाए राम जिस पेटे पूरा सतगुरु मेरी जिंदड़िए तो हर तन निध पाए राम वड पागी संगत मिले मेरी जिंदड़िए नानक हर गुण गाए राम थाम संतर रव रहा मेरी जिंदड़िए पार ब्रह्म प्रभ दाता राम सांसा अंत ना पाई।

काल जियो हर हर नाम आराधे राम कर सेवो पूरा सतगुरु मेरे लाल जियो जमता मार्ग साधे राम मार्ग बिखड़ा साध गुरमुख हर दरगे

मन तन तन सब प्रभु केरा क्या तो पूज चढ़ावे जिस होए कृपाल दयाल स्वामी सो प्रभु अंक समावे पाद मस्तक होए जिसके किस गुरु नाल स्नेहा जन कह नानक मिल साध संगत हर हर नाम पूजे हा जह जिस खोजत हम फिरे मेरे लाल जियो हर पायड़ा कर आए राम हर मंदिर हर जियो साजिया मेरे लाल जियो हर तिस में रहा समाए राम सर्वे समाना आप स्वामी गुरुमुख प्रगट होया मिटिया अंधेरा दुख नाता अम्यो हर रस चोया जहां देखा तह स्वामी पार ब्रह्म सब खाए जन कहे नानक सतगुर मिलाया हर पाए अड़ा कर आए राज बिहागरा महला पंजवा अत प्रीत

नानक पयम पै संत जम पै मेल संत हमारा। लाख उलाहने मोहे हर जग लग नह मिले राम, मिलन को करो उपाव किछ हमारा नह चले राम। चल चित बित अनित प्रेम बिन कवन विधि ना कीजिए, खान पान सिगार बिरथे हर संत बिन क्यों दीजिए। आशा प्यासी रैन दिनियर रहना सकिए इक तिले, नानक पयम पै संत दासी तो प्रसाद मेरा फिर मिले। सेज एक प्रयो संग दर्श ना पाए राम, अवगन मोहे अनेक कत महल बुलाये राम। निर्गुण निमानी अनाथ बिनवे मिलो प्रभ कृपा निदे, प्रम पीत खोइए सहज खोइए प्रभ पलक पेशक नव निदे। गृह लाल आवे महल पावे मिल संग मंगल गाये, नाम पयम पै संत सरणी मोहे दर्श दिखाये। संतन के प्रसाद हर हर पाया राम, इस पुन्नी मन सांत तपत बुझाया राम। सफला को दिन फिर सुहावी आनंद मंगल।

मिल सकी मंगल गाया नाम पयम पे संत जम पे जिन हर हर संजोग मिलाया। बिहागड़ा महला पंजवा कर कृपा गुरु पार ब्रह्म पूरे अंदर नाम वसाना राम अमृत बाणी उतरा हर जस मिठा लागे तेरा पाना राम कर दया मया गोपाल गोविंद कोई नहीं तुझ बिना समरथ अगत अपार पूरन जियो तन तन तुम मना। मूरख मुगद अनाथ चंचल बलहीन नीच अजाना बिनवंत नानक शरण तेरी रख ले हो आन जाना। साधे शरणी पाईए हर जियो गुण गावे हर नीता राम तूर भगतन की मन तन लगो हर जियो।

बहुत खजाना तिन पे हर जियो हर कीर्तन लाहा राम। काम क्रोध ना लोभ ब्यापे जो जन प्रभ सिउ रातिया, एक जाने एक माने राम के रंग मातिया। लग संत चरणी परे सरणी मन तिना उमाहा, बिन वंश नानक जिन नाम पल्ले से सत्य साहा। नानक सोई सिमरिए हर जियो जाकी कल तारी राम, गुरुमुख मनो ना विसरे हर जियो करता पुरख मुरारी राम। दुख रोग ना पाओ ब्यापे जिन्नी हर हर त्याया, संत प्रसाद सरे सब जल पूरब लिखिया पाया। वजी वधाई मन सांस आई मिलिया पुरख अपारी, बिनवंत नाम।

अरे अमृत है, कदी संसार दी हर कोने विच निगाह मारिए, बिना हरी तो कोई अमृत नहीं दिखता। फैसला गुरबाणी ने भी दे दिता। कहन लगे मृत मंडल जग साजिया, जिन्ना संसार है, जिन्नी दुनिया है, जिन्नी लोकाई सारी मृत्यु के घेरे विच है। ते अमृत का अर्थ है मृत्यु तो रहित, जो मरे ना, जिस सारा संसार ही मृत मंडल है, तो फिर अमृत कौन है? गुरु आखन लगे

बर्बल है। इसमें हरी अमृत है, एक ख्याल करियो। गुरु ने बाणी विच एक गल आख दित्ती, कहन लगे जेड़ा अमृत पींदा है वह भी अमृत हो जाता है, अमर हो जाता है। अमृत पीवे अमर सो होए। हुण पीने का एक राह नहीं, पीने का अर्थ है अंदर प्रवेश करना किसी चीज का, ग्रासन का अर्थ भी है अंदर प्रवेश करना किसी चीज का। अर्थ की किसी पिजन का अर्थ भी यह है जो अंदर प्रवेश करे। जेड़ा कपड़ा पानी नाल भिजदा नहीं, उनकी की निशानी होंदी है? बारिश पैंदी है, मनुख रेन कोट पा के तुरिया जांदा है। बारिश पै रही पानी उपर गिर रहा है, पर पानी उस रेन कोट के कपड़े के अंदर प्रवेश नहीं कर रहा। इहो कारण है असी आखने एक कपड़ा भिजदा नहीं। तो भिजन का अर्थ भी है अंदर प्रवेश कर जाना, ग्रासन का अर्थ भी है अंदर प्रवेश कर जाना, पीन का अर्थ भी है अंदर प्रवेश कर जाना। तो गुरु आख रहे ने जेड़ा अमृत पींदा है, हरी अमृत है, वो मृत्यु तो रहता है, कि जेड़ा अमृत पींदा है वह भी अमर हो जाता है। तो एक ख्याल करो, पीन के कई रस्ते ने, अखा भी पींदिया ने, क्योंकि हर एक चीज न अंदर तक पहुंचादियां ने, उसकी रूप न उसकी रेख न उसके रंग न अंदर लै जा ने। इसलिए लोयन भी एक पीन का साधन ने, उसे का नाम भिजना है। हुण इत्थे एक लफज सोचने, गुरु इन्हां लोयनां की गल नहीं कर रहे, इन्हां लोयनां दे पिछे भी कोई लोयन है। जदों इन्हां लोयनां की गल आई ना, गुरु ने आख दिता, कहन लगी

0: इस अंदर के युद्ध में हथियार की ज्ञान आप सबू की बाणी अंदर अनेक थां अंदर दे युद्ध का जिक्र देखने गुरु कहते हैं
1: हाँ गुस्थाई दा पहलवानड़ा मैं गुरु

और गुरु अंगद पाद कविता अर्ज करें। ये सौ चंदायुग उन्होंने कहते में मनुख नु देवता बना देते हैं, उच्चे अचरण वाला बना देते हैं। मुकाबला जेड़ा मुकाबला उनका आरंभ किया है, कौन बने है, किवें बने की गल सारे आज परिवार में चल रही है। मनुख नु देवता बना देते हैं। कहने लगे एक होर ख्याल करो, जे देह रूप किसी गुरु ने बनाना होंगे ता अंदर की गल ना होंगी। गुरु अमृत पातशाह कहन लगे आ जे सूरज से चंद्रमा ने ना तो केवल बाहर रोशनी करते, अंदर रोशनी बिल्कुल नहीं करते। ये तो जरा दीवारा बना दो, मजबूत पर्दे ला दो, ना सूरज की ना चंद्रमा की रोशनी अंदर आती नहीं, भला जीवन के अंदर किवें जाएगी? गल तो जीवन की हो रही है। गुरु कह लगे जे सौ चंदा उगवे उसे ही पट्टी की प्रोड़ता। गुरु अंगद पातशाह कर रहे कहते जे सौ चंद्रमा चढ़ पे हजारों सूरज चढ़ पैन वो जीवन के अंदर के अंधेरे को दूर नहीं कर सकते। इतों भी साबित हो गया कि अंदर के अंधेरे को दूर करने वाला कौन है? ज्ञान गुरु। अंदर रोशनी शब्द ने करनी है। गुरबाणी इस जग में चानन कर्म बस्ते मनाए, एक और रोशनी है जी जीवन के अंदर प्रवेश करती है, वो केवल शब्द की बाणी गुरु की रोशनी। गुरु आख रहा जी।

अंदर भी रोशनी से पैदा करता है, और सूर्य से चंद्रमा नहीं पैदा कर सकता, वो केवल शब्द ही पैदा कर सकता है जो अज्ञान गुरु ने। कहने लगे मैं दुनिया के लोगों को एक गल समझा देना चाहना, भले हो शब्द नाल जुड़ो, बाणी गुरु के नेड़े होवो, देखो वो कमजोर ते निर्बल जीवन जिहड़ा काम कोद लोभ अहंकार के सामने हार खा रहे है, दिन रात गोडे पे टेकदा है, दर्द दर भटक रहा है, अज भी देख लो। कहने लगे आओ जे गुरु नाल जुड़ोगे गुरु तुहानू योद्धा बना देगा। अवारी सी गुरु तुहानू योद्धा बनाएगा अंदर दे मैदान का। कहने लगे जेडे गुरु नाल नहीं जुड़ते उन्हां दी हालत भी दस देना चाहना। नानक गुरु ना चेतनी, फिर गुरु नानक पाशाह।

ज्योति स्वरूप लोक प्रलोक दिस सहाय तन तन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी गांधी पावन पवित्र हजूरी अंदर हफ्तावारी शाम के सज्जे दीवाना विच सज बैठे गुरु सवारी गुरु प्यारी गुरु रूप गुरु खालसा सत संगत जीओ सतगुरु जी की रहमत पावन पवित्र दर्शन करन दा सुभाग प्राप्त होया है। सतसंगी जन बन के आप सारे श्रेष्ठ भागां वाले पवित्र हजूरी जिथे रहिरास साहिब जी दे पाठ होए उपरंत आप जीआं ने गुरमुख प्यारियां दी रचना तों तुरती बाणी दे कीर्तन सरवण कीते आओ कुछ समा गुरु पिता जी की रहमत चल रही लड़ीवार शब्द विचार सांझ कर सकीए। कोई विचार आरंभ करन तों पहलों समूह साध संगत दे चरना निम्रता सहित बेनती है जी आशीष दिओ गज वज के गुरु फतेह सांझ पाओ जी। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी।

सतगुरु एक दिन जंगल बियाबान कीर्तन हो रहा है, भाई मरदाना जी रबाब बजा रहे हैं। हुण सतगुरु गुरु नानक साहब कीर्तन करते हो ते बरकतां कहिंदे हन जंगल दे पंछी जानवर नेड़े नेड़े आउण लग पए, आके ना उदाले वैख दे जान, संगत वेखो बन रही है। ये गुरु नानक साहब कीर्तन कर रहे हैं ना, ये कोई इंसान आम नहीं कर रहा। इत्थे कीर्तन कर लिया ते उत्थे जाके लैपटॉप ते सारी रात मुड़ के फिल्म देखी, ये वो कीर्तनियां नहीं ना, नाम कमाई वाले कीर्तन। सतगुरु जी कीर्तन कर रहे हैं, उदाले पंछी जानवर बैठने शुरू हो गए, एन समाधि लीन। भाई मरदाना जी दे मन च पर फुरना की आ गया, कहिंदे हन ये रबाब दीआं बरकतां हन, ये रबाब वज रही है, ये रबाब दी बरकत है, ये पंछी ये जानवर रबाब ते खुश होके इहदी धुनी ते खुश होके ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं। हुण तन मेरे पातशाह कट कट के अंतर की जानत, गुरु पातशाह जान गए इते केवल ते केवल अपने साज राग ते होमे पैदा हो गए। साखीकार लिखदा सतगुरां कुछ चिर वास्ते शब्द बंद कर दिता, रबाब वज रही है, सतगुरु जी ने शब्द बंद कर दिता, रबाब चलती जा रही है। हुण की देखिया पंछी चहचहाउण लग पए, रौला पाउण लग पए, वो जानवर भी बोलन लग पए। मरदाने दा शंका दूर हो गया, रबाब दी बरकत नहीं इस शब्द दी बरकत, रबाब दी बरकत नहीं केवल, एदा भाव ए ना कहना कि रबाब दा मुल कोई नहीं, नहीं रबाब आसन है, किसी आसन ते राग बैठेगा। गुरु ने सुंदर आसन बनाया है, पर केवल ते केवल गा रहा है। सतगुरु कहिंदे हन सुना रहा कथा कर करके, की फर्क पवेगा इन्हें अंदर ला नहीं सवार। भाई साहब भाई गुरदास जी का एक बड़ा सुंदर सवैया है, भाई साहब कहिंदे हन जैस गौ मुख बाग जैसे मिले मृग माल बिख है, गऊ वर्गा भोला भाला मूंह बना के कोई शेर मृगां दी द्यार चा के मिल जावे। गौ मुख बाग जैसे मिले मृग माल बिख है, हुण की है उन्हां दा असर कबूलेगा भला? नहीं कबूलेगा। कंगना पहर ज्यों बलैया खग मोह, कोई बिल्ली मौली दा धागा बन के गलते सुट के मौली दा धागा पंछियां नू कहे मैं तीर्थां तो आई। कंगना पहर ज्यों बलैया खग मोह, की करेगी लियाज करेगी उन्हां पंछियां दा? को फर्क पवेगा उन्हों उस मौड़ी दे धागे का? को फर्क पवेगा? बिल्कुल भाई साहब कहिंदे नहीं पवेगा। बगल समाध जैसे करत आहार मीन, बगले दी समाधि जदो बंदा वेंदा जांदा हुंदा कहिंदा एडा भोला पंछी, इन्नी एदी समाधि, इन्नी एदी समाधि, उन्ना ही इक थां टिकिया होया खड़ा, पता ही उदो लगदा है, पता उदो लगता जदों अपने शिकार से चपट जाता है। बड़ा सुंदर भगत नामदेव जी कहिंदे हन साप कुंच छोड़ा है बिख नहीं छड़ा, सप कुंज उतारदा उतली अंदरले जहर नूं फर्क नहीं, जिवें अगे मैं बेनती की सप पड़ाई, साप बिख साप कुंच छोड़ा है बिख नहीं छड़ा है, उदक माहे जैसे बग ध्यान मंडा है, जिवें पानी विच बगले दी समाधि ऐन टिके लगी हुई, की उहदी समाधि है? नहीं समाधि। काहे को कीजै ध्यान जपन्ना जप ते शुद्ध नहीं मन अपना, इहदा भाव ये नहीं लैना कदी अर्थ इस ढंग नाल बनते इस तरह ही दे अर्थ कीता भी इस तरह ही है, ध्यान लाउण दा की फायदा? तेरा मन ही नहीं शुद्ध।

कई बारी ऐसा हुंदा है, जरूरी नहीं जिन्ना नूं असीं प्यार कर रहे हैं, जिन्ना वास्ते कर रहे हैं, वो इसका मुल पा देन जां इस नूं घट्टो घट जान लैण कोई कर रहा है। सतगुरु ने ऐसा कह दिता, टुटड़िया सा प्रीत जो लाई बेअन सियों। होर प्रीतां बहुत वारी लगदियां हन, टुटदियां हन, तां ही तत सामने रख दिता गुरु तेग बहादुर साहब जी ने। जगत मैं झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख से सब लाग्यो, क्या दारा क्या मीत। हुण इह भाव कहांगे मालक नाल प्यार करना तो फिर खलकत नाल नहीं, नहीं ऐसा भी नहीं। अपना मुख उस वाहेगुरु वल रख, असल विच जो वाहेगुरु नाल प्यार करेगा वह खलकत नाल भी करेगा, क्योंकि फरीदा खालक खलक मैं, खलक वसा रब माहे, मंदा किस नू आखिए जां तिस बिन कोई ना। वाहेगुरु दा इस सृष्टि विच वासा है, पर इस सृष्टि नाल भी ओयो प्यार करेगा, ओयो फर्जां नू संपूर्णता नाल निभावेगा जिदा एक वाहेगुरु नाल प्यार बन गया। सतगुरु रहमत करदे हन के वे दिलों मोहब्बत जिन, बाबा फरीद जी दिलों मोहब्बत जिन से सचिया, जिन मन होर मुख होर से कंडे कच्चिया। प्यार दिलों अंदरों केवल चुपड़ी प्रीत नहीं, वखावे दी नहीं, अंदर दा प्यार। सतगुरु ते कहिंदे हन फिर प्यार इक नाल बनाई, प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना, जप मन गोविंद एक है, अवर नहीं को लेख है, संत लाग मन है शाड दुबदा की कुरिया, शाड मना दुबदा दियां पग डंडियां। एक प्रभु एक वाहेगुरु नाल अपना प्यार बना। अच्छा गुरु पातशाह ते कहिंदे हन जे तेनू अपने आप च नहीं पता लग रहा, घटो घट इन्हां जीवां वाली वेख लै। प्रकृति विच ऐसे जीव हैं जिन्हां दी प्रीति ते भावें एक पासड़ है पर ओह कर रहे हन। प्रीत एक पासड़ है। भाई साहब भाई गुरदास जी, दीपक पतंग अल कमल सलल मीन, चकई चकोर मृग रव सस नाद है। प्रीत एक अंगी बहु रंगी नहीं संगी को, सब दुखदाई न सहाई अंत आद है। दीवे नाल प्रीति कर रहा पतंगा, पर दीवा ते कोई नहीं कर रहा। पतंगा आउंदा मुद्दत काल तो आके सड़दा आ रहा, कदी दीवे नू तरस नहीं आया। ये मेरे ते इन्ना लुटू हुंदा है, मरदा है, मैं इनू बचावा ना साड़ा, कदी नहीं। दीपक पतंग अल कमल, पवरे दी कमल फुल नाल प्रीति है। अच्छा ओयो बंद करके रात संपट कर लेंदा, मार देंदा है। दीपक पतंग अल कमल सलल मीन, मच्छी दी प्रीति है पानी नाल। पानी ओदा जीवन है, पर जदों शिकारी आके जाल सुटदा है, पानी ने कदी कोई यतन नहीं कीता कि इस मच्छी नू बचा लो, नहीं करता। ऐरे सारियां प्रीतां सतगुरां ने ऐसियां भाई साहब जी ने भी कहियां हन, पर कहिंदे हन ये करदे हन। प्रीत दा कोई जवाब नहीं अगों, पर करदे हन। पर गुरु के सिखा तेरी प्रीत एक पासड़ नहीं,
तू प्यार कर अपने सतगुरु नाल, तू थोड़ा प्यार कीता सतगुरु कई गुणा वध प्यार कर दे। भाई साहब जी, भाई गुरदास जी एक सवैये च बड़ा सुंदर कहिंदे हन।

अंग राग रंग जाके जल बाधना नाम गर्भ गंजन दुष्ट मंजन मुक्त दायक काम आप रूप मी कान वस्तद एक पुरख दूत है गर्भ गंजन सर भंजन आदि रूप सूत अंग ही न भंग नातम एक पुरख पारु सर्व लायक सर्व कायक हो सर्व गोप्रत पारु सर्व गंता सर्व हंता सर्व देयन पेख हो सर्व शास्त्र न जानी जे रूप रंग हर रेख परम वेद प्राण जा कह नेद बाखद नित कोट सिमरत प्राण शास्त्र न आवई बहु चित मद पार छंद दव प्रसाद गुणगन उदार महिमा पार आसन पंग उपमान अंग अनुभव प्रकाश निस्दिन अनाश राजन वाह शान शाह राजन राज पानन पान दीवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालन बाल रंकन रंग कालन काल अनुभूत अंग अपाप अंग गतमित पार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपैने काम आत दुत प्रचंड मित गत अखंड अलिष्ट कर्म अदृष्ट धर्म सर्वा प्रणाढ़ आन दंड बाढ़ चाचरी छंद दव प्रसाद गोबिंदे मकंदे उदारे पारे हरियंग करियंग निरनामे कामी भुजंग प्रयाद छंद चतर चकर करता चतर चकर हरता चतर चकर दानी चतर चकर जाने चतर चकर भरती चतर चकर भरती चतर चकर पाले चतर चकर काले चतर चकर वासे चतर चकर वासे चतर चकर माने आई चतर चकर दाने आई चाचरी छंद ना सत्र न मित्र न परमंग न पितर न करमंग न काय जन्म न जाय ना चित्र न मित्र पर पवित्र प्रतिशा दिशा दृशा कृषा भगवती छंद दव प्रसाद कथ ते के आशिज देश है क्या बिज बिश है क्या बिज अगंज कर्म है क्या बज भरम है क्या बिज लोक है क्या दत सुख है क्या दूत भरण है कि वे भूत करण है के राजंग प्रभा है कि धर्मंग तो जाए कि अशोक भरण है कि सर्वा भरण है कि जगतंग कृति है कि शत्रंग क्षत्रिय है कि ब्रह्मंग स्वरूप है कि अनुपान रूप है कि आद अदेव है कि आप अपेव है कि चतरंग विहीन है कि एक अधीन है के रोजी रजा कर ही मेरे हाक है कि पाक बेअब है कि गैब लुगैब है के आफ बोल गुनाह है कि शाह अनुशाह है कि कारण कुनिंद है कि रोजी दहम है कि राज करीम है कि कर्मंग करीम है कि सर्वंग कली है कि सर्वंग धली है कि सर्वत्र माने आए कि सर्वत्र दाने आए कि सर्वत्र गावन है कि सर्वत्र भावन है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीना है के सर्वत्र लीना है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र बेस है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र माने आए के सर्वत्र सदैव अंग प्रधाने आए के सर्वत्र जापे आए के सर्वत्र सापे आए के सर्वत्र भान आए के सर्वत्र मान आए के सर्वत्र इंद्र आए के सर्वत्र चंद्र आए के सर्वंग कलीमा है के परमंग भीमा है के अगलो लाम है के साहब कलाम है के हुसन वजूह है तमाम रजूह है हमेश सलाम है सलीक तुमदाम है गनी वल सकाशता गरीब वल बरसता है बलंदल मकान है जमीन वल जमाना है तमीज वल तमाम है रजू वल निधान है हरीफ वल अजीमा रजा के जकीना है अनेक उल तरंग है भेद है पंग है आजी जो नवाज है गनीमल खराज है निरुक्त स्वरूप है द्रमुक्त बभूत है प्रभुक्त प्रवाह है सुजुक्त सुधा है सदैव स्वरूप बेदी अनूप है समस्त पराज है सदा सर्वसाज है समस्त सलाम है सदैव काम है निर्वाध स्वरूप है गाध अनूप है ओअंगाद रूप है नाद स्वरूप है स्वरूप है नंगी अनामे त्रिपंगी त्रकामे त्रिवर्गंग त्रिवाद्य गंजय गाधे सुभंग सर्वभाग्य सुसर्भ अनुरागे त्रिपौक्त स्वरूप ऐस जयसूत है कि नरकंग प्रणाश है मृत्युल प्रवास है निरुक्त प्रवाह है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रज्योत अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है प्रज्योत अनूप है चाचरी छंद अपंग है रंग है पेखा लेख है परम कर्म नाद जुगाद है अजय अभय भूत है तूत है नास अवदास दंद बंद है अभगत है विरगत है नास है प्रकाश है नजंत सनंत लेख देख है अलेख है पेख टाह गाय असम गम है नीला नाद है अनित सुनता जात जात है चरपुट छंद दव प्रसाद
सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर

कर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं प्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता रसावल शांतता प्रसाद नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अभंगं बभूते परमाथं परमाथि सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध बभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न ताते न माते न जाते न पाते निरसागम श्री कह मित कहें सदैव प्रवाह जय हजाय भगवती शांत दव प्रसाद के जार जूर है कि हाजर हजूर है हमेशर सलाम है समाज तुल सलाम है कि साहब दिमाग है कि उसनों चिराग है कि कामल करीम है कि राज करीम है कि रोजी दहेंद है कि राज करहेंद है क्रीमल कमाल है कि उसनों जमाल है क्रीमल खराज है क्रीमल नवाज है हरीफल शिकन है रासल पकान है कलंक प्रणास है समाज तुल निवास है गंजल गनीम है रजाय करहीम है समाज तुल जवा है कि साहेब गिराए कि नरकंग प्रणास है बैस तुल निवास है कि सरवल गवान है मीसल रवान है तमाम तमीज है समाज तुल अजीज है परंग परमीस है समाज तुल अदीस है अदीसल अदीख है मीसल अभेख है जमीन उल जमा है मीगल माह है क्रीमल कमाल है जरो जमा है गजलिंग प्रकाश है कि मैं तो सुभाष है कि अज विसरूप है कि मैं तो भूत है कि मैं तो बसा है कि आदम प्रवाह है गजलिंग नांग है कि मैं तो भंग है मधु पार शांत तव प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गण मदाम हर भर गंज हर नर पर भंज अन गण प्रणाम मुन मन सलाम हर नर खांडू भर नर मांड अन पवे नाश मुन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल धन मदाम अंश जी अंग आसन अपंग उपमा पार गत में उदार जल थल अमांडो दिस विस अपांडो जल थल महंत दिस विस बेअंत अन पवे नाश त्रित तर त्रास आजन बाह एक कैसदा ओंकार आद कथनी अनाद खलखंड ख्याल गुरभर अकाल कर कर प्रणाम जित चरण नाम अनश जगात आज जिन बात अंज जगात अंदरंज बात आन टुट भंडार अणठट बार अडीट धर्म अतडीट कर्म अणबरण अंत दाता महंत हर भूल मना छंद दव प्रसाद करुणालय है हर कालिया है कल खंडन है मैं मंडन है जगदेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है दृत के चरण है जग के करण है मनमान्या है जग जान्या है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्वपाश्य है सर्वनाश्या है करुणा कर है विश्वंबर है सर्वेश्वर है जगदेश्वर है ब्रह्मांड से है खलखंड से है परते पर है करुणा कर है जपा जप है थपा थप है कृता कृता अमृत अमृत है अमृता अमृत है करुणा कृत है कृता कृता धरणी धृत है अमृतेश्वर है परमेश्वर है कृता कृता अमृत अमृत है जपा कृता अमृत अमृत है नर नायक है खलकायक है विश्वंबर है करुणालय है नृप नायक है सर्वपायक है बहुपंजन है हर गंजन है रिप तापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्मा है सर्वात्म है आत्म वास्त है जस के जस है भुजंग प्रजात शब्द नमो सूर्य सूर्ये नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारी नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राजसंग तामसंग शांत रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे नादिंग भूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अभंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अशरी शांत अजय अलय पाया भय अपूवजू अनाथ काश गंज पंज लख पख गल दयाल लिख पीख राम काम गाटा नाथे प्रमाथे जोनी मोनि न रागे न रंगे न रूपे न रेखे करमंग बरमंग गंजे लेखे भुजंग प्रयात छंद नमाज तुल प्रणामे समाज तुल प्रणास गंजल नामे समाज तुल निवास निरकामंग बभूते समाज तुल स्वरूपे को कर्मंग प्रणासी सुधर्मंग बभूते सदा सचदानंद सदरंग प्रणासी ग्रीमल कनिंदा समाज तुल निवासी
अजायब बब्बे पुते गजायब गनी मैं हरियंग करियंग करी मगर ही मैं जदर जगर वर्दी जदर जगर भुगते सुजम भव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अपंगंग बभूते चतर जकर भरती चतर जकर भुगते स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अपंगंग बभूते सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ तव प्रसाद सवैये को ओंकार सतगुरु प्रसाद तव प्रसाद सवैये पातशाह दसवीं श्रावक सुध समूह सुधान के देख फिरो कर जोग जति के सूर सुरादन सुध सुधा दे को संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मात को न देखे प्राण पति के श्री भगवान की भय कृपा हूं दे करती बने करती के माते मदंग जर जर संग अनूप दंग सुरंग सवारी गोड तरंग कुरंग से गुरत पवन के गौन को जात निवारी भारी भजान के पूप बली वेद न्याव सीधना जात विचारी इत पै तु काम पै पूपत अंत को नंग पाए पदारी जीत फिराए सब देश दिशान को बाज तटोल मृदंग नगारी गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हंसत है हजराज हजारी ऊत भवेख भगवान के पूपत कौन करे नहीं जात विचारी सरिपत सरि भगवान भजे बैन अंत को अंत के धाम सुधारी तीर्थ नान दया दमदान सुसंजम नेम अनेक बसेख है वेद पुराण देव कराण जमीन जवान सुबान के पेख है पौन आहार जति जल तारू सब सब चार हजार के देख है सरि भगवान भजे बैन पूपत एक रति बिन एक ना लेख है शुद्ध सुबादुर अंत सुशासन आदुर ज्ञान दलाएंगे भारी गुमान पर मन मह कर पर्वत पंखल नहा लेंगे तोर हरीन मरोर वासन माध्यम दंगन मान मलाएंगे श्री पासरी भगवान कृपा बिन त्याग जहान दान चलाएंगे वीर पार बड़े बरियार बचारे सर की दर पिछैया दूर तो देश बुलंद मवासन माते जान के मान मलैया गाड़ी गड़ान को तोड़ना हार जो बात नहीं चक चार लवैया साहिब श्री सब को सरनाय को जाचकान एक सौ एक दवैया दान बदेव फुने दन साचर भूत भवैख भवान जपेंगे जीव जते जल में थल में पानी पल में सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत तुन बापन के बह पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिराए जग सदर सब अब लोग चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र निरातप जो अंतर लोक राज करेंगे कोट स्नान गजादिक दान अनेक सुअंबर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सची बद अंत भसेजम बास भरेंगे जे नार सरिपद के पर सह पाग ते नर फिर न दे करेंगे कहाँ पयो जो दो लोचन मुंद के बैठ भगत्यान लगायो न हाथ फिरियोलिय सात समुद्रन लोग गए उबर लोग गवायो भास की उपख्यान सो बैठ गए से ही ऐसे सुबैस बतायो साच कहूँ सुन लेहो सबै जिन प्रेम कियो जनी प्रभु पायो काहू ले पाहन पूज करे सर काहू ले लिंग करे लटकायो काहू लख्यो और वाची दिशा में काहू पुछा गुसी सुनवायो को बतान को पूजत है बस को मृतान को पूजन तायो गुर करे और जो सब ही जागो श्री भगवान को भेद न पायो कौब दान को पूजत है बस कौमर दान को पूजन तायो अंकुर करे और जो सभी जग श्री भगवान को भेद न पायो पातशाही दसवीं कव्यो बाज बेनती चौपई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण हो चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो व्रत पारा हमरे दोष सब तुम काबहो आप हाथ दे मोहे बचावहो सुखी वसै मोरु परिवार सेवक सिख सब करतार मोर अच्छा निज कर दे करें सब बैरन कौ आज सिंगरें पूर्ण होए हमारी आसा दूर भजन की रह प्यासा तुम है शाड़ कोई अवरना त्याऊ जो बर चाहो सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे मरे है मरण काल का त्रास न भरे है हू जो सदा हमारे पछा सरी अज कर रक्षा राख लेह मय राख नहारी साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बबधरा काल पाए शिवजू अवधरा काल पाए कर विजन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी सब कियो वेद राज ब्रह्मा जो थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहि हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैंत जशन उपजायो आद्यंत कै अवतार सोई गुरु समझियो हमारा
नमस्कार तिसहि को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो सदरन को बल मोहबद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चिटी दे गुंजर असूला सब पर कृपा दृढ़ कर फूला संतन दुख पाए दे दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछानाए घट घट के बट बट की जानाए जब बुध करख करा कर तारा प्रजा दर्द तब दे अपार जब या करख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत दे तर सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अरयालम निरंकार निर्विकार निरलंब आद नील नाद संभ जाका मूढ़ चारद भिदा जाको भेव न पावत भिदा ता कौ कार्य बहन अनुमानत महामूढ़ कश भेद न जानत महादेव कौ कह सदा सेव निरंकार का चिंत न पैव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत बिन बिन दोहे देती तुमरा लखान जाय पसारा के विद सजा प्रथम संसारा

गायना दूसरा जगह में है तेरा अंत न पाया सुर नारे मुन जन अमृत खोज रे सु अमृत गुर दे पाया पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया जी जानत सब तो दो पाए एक वेख परसने आया लभ लोभ अहंकार चुका सतगुरु भला पाया कहे नानक जिसनु आप दुठा तिने अमृत गुर दे पाया भगतां की चाल निराली चाला निराली भगतां केरी बिखम मार्ग चलना लभ लोभ अहंकार ताहि तृष्णा बहुत नाही बोलना कन्नो तिखी वालो तिखी एत मार्ग जाना गुर प्रसादी जनी आप धरिया हर वासना समाणी कहे नानक जाल भगता जुगो जुग निराली ज्यो तू जलाए देव चला स्वामी और क्या जाना गुण तेरे जिव तू जलाए देव चला जन्ना मार्ग पावे कर कृपा जिन नाम लाहे से हर हर सदा त्यावे जिसनु कथा सुनाए अपनी से गुरुद्वारे सुख पावे कहे नानक सच्चे साहिब जो भावे तिवै चलावे एह सुहिला शब्द सुहावा शब्द सुहावा सदा सुहिला सतगुरु सुनाया ए तिन कै मन वसया जिन तुरों लिख आया एक फिरे कनेरे करें गल्ला गल्ली करें ना पाया कहे नानक शब्द सुहिला सतगुरु सुनाया पवित होए से जना जिनी हर त्याया हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया पवित माता पिता कुटुंब सहत स्यों पवित संग दसवाईया कहिंदे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया कहे नानक से पवित जिनी गुरमुख हर त्याया करमी सहज न उपजै बण सहज सहस न जाई न जाय सहस कित संजम रहे कर्म कमाए सहसा जीव मलीन है कद संजम धोता जाए मन तो बहु शब्द लाग वार सिर हो चित लाए कहे नानक गुर प्रसादी सहज बजाए सहसा बजाए जियो मैले बारो निर्मल जियो त मैले जिनी जन्म जुए हारिया ए तिशना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया विदा मैं नाम उत्तम सो सुने नाही फिर ज्यो बेता लिया कहे नानक जन सच दजया कूड़े लागे जिनी जन्म जुए हारिया जियो निर्मल बारो निर्मल बारो त निर्मल जियो निर्मल सतगुर दे करनी कमाणी कूड़ की सोए पहुंचे नाही मनसा सच समाणी जन्म रतन जिनी खटिया बले से बुण जारी कहे नानक जन मन निर्मल सदा रहे गुरनाले जे को सिख गुरु से ती सनमुख होवै उस सनमुख सिख होई जियो रहे गुरनाले गुर के चरण हृदय त्याई अंतरात्मा संभाले आप छड़ सदा रहे परने गुर बिना वर न जाने कोई कहे नानक सुनो संत सो सिख सनमुख होए जे को गुर ते विमुख होवे बिन सतगुर मुक्त न पावे पावे मुक्त न होर सह कोई पुछम वे किया जाई अनेक जूनी भरम आवे बिन सतगुर मुक्त न पाए फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुर सब सुनाई कहे नानक विचार देखो बिन सतगुर मुक्त न पाए आव हो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सची बाणी बाणी तां गावो गुरु की री बाणी सिर बाणी जिनको नजर कर्म होवे हृदय तना समाणी पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जप्यो सारंग बाणी कहे नानक सदा गावो एहो सची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी तो कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी कहिंदे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख बखाणी हर हर न जप्यो जीओ लाह घटे दिहाड़ी एह तन तिना मिलिया जिन हर बाणा कहे नानक हर रास मीरी पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जपो सारंग पाणी कहे नानक सदा गावे एहो सची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी तां कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी कहिंदे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आंख वखाणी हर हर नित करे रसना कहिया कछु न जानी चित जन का हिर लया माया बोलन पै रवाणी कहे नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जत जड़ाऊ शब्द रतन जित मन लागा हे हुआ समाऊ शब्द छेती मन लिया सचे लाया भाव आपे हीरा रतन आपे जिसनों दे बजाए कहे नानक शब्द रतन है हीरा जत जड़ाऊ शिव सकता पो पाए कह करता आपे हुकुम बरताए आप वेख गुरमुख से बजाए तोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनु आप करे सो होवे एक स्यों लिबलाए कह नानक आप करता आपे हुकुम बजाए सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्ता सार न जानी गुरु बाजो तत्ता सार न जानी तेही गुणी संसार परम सुधा सुत्या रहन बयानी गुर कृपा ते सी जन जागे जिन हर मन वसया भूले अमृत बाणी कहे नानक सो तत पाए जिसनों आन दिन हर लिबला गए जागत रहन बिहानी
माता के उदर में प्रतिपाल करे सो क्यों मनो विसारी है मनो क्यों विसारी है वृदाता जी अगन में आहार पहुंचावे ओसनो के पो न सके जिसनो अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभाली है कहे नानके वृदाता सो क्यों मनो विसारी है जैसी अग्न उदर मह तैसी बार माया माया अगन सब एक जी करते खिलर जाया जां तिस पाणा दा जमया परवार भला पाया लिव छुड़की लगी दृष्णा माया मरबरताया इह माया जितार विसरै मोह बजै भाव दूजा लाया कहे नानक गुर प्रसादी जिन्ना लिव लागी तिन्नी विचे माया पाया हार आप मुल कहे मुल ना पाया जाए मुल ना पाया जाए किसै बिटो रहे लोक विल लाए ऐसा सतगुर जी मिलै तिसनु सिर सौंपिया विचों आप जाए जिसदा जियो तिस मिल रहे हर बसै मन आए हर आप मुलक है भाग दिना के नानका जिन हर पलै पाए हर रास मेरी मन बणजारा हर रास मेरी मन बणजारा सतगुर दे रास जानी हर हर नचप्यो जियो लाह खट्यो दिहाड़ी एह धन तिना मिलया जिन हर पे भाणा कहे नानका रास मेरी मन हुआ बणजारा ए रसना आतवान रसराज रही तेरी प्यास न जाए उर्द कित जिचर हर रस पल्ले न पाए हर रस पाए पल्लै पिए हर रस बौड़ना दृशन ला गया आए इह हर रस करमी पाई है सतगुर मिलै जिस आए कहे नानको रंद रस बिसरे जार वसै मन आए ए शरीरा मेरिया हर तुम जोत रखी दादु जग मैं आया हर जोत रखी दुध विच दातु जग मैं आया हर आपे माता आपे पिता जन जियो पाए जग दिखाया गुर प्रसादी बुझिया दा जलत हुआ जलत नदरी आया कहे नानक सेठका मूल लज्या जोत राखी दातु जग मैं आया मन जाओ भया प्रभाग सुनया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनया हर गाओ मंगल ने सखी सुख दुख न व्यापे गुर जरण लागे दिन सुभागे अपना बिर जापे अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो कहे नानक प्रभु आप मिलया करन कारण जोगो ए शरीरा मेरिया इस जग में आए कह क्या तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन ना बसाया गुर प्रसादी हर मन वसया बूरू लिखया पाया कहे नानके शरीर परवान हवा जिन सतगुर स्यों चित लाया ए नेत्रो मेरे हो हर तुम जो धरी हर बिर अवर न देखो कोई हर अवर न देखो कोई नदरी हर निहालया ए वेस संसार तुम देखदे हर का रूप है रूप नदरी आया गुर प्रसादी पुजया जा वेखा हर एक है हर बिन वर्ण कोई कह नानके ने तरंद से सतगुर मिलया दे बदरट होई ए श्रवणो मेरे हो साचा सुनणै नो पठाए साचा सुनणै नो पठाए श्री लाए सुनो सतबाणी जित सुनी मन तन हरिया हुआ रसना रस माणी साचा लख बडाणी ता की गत कही न जाए कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होव साचा सुनणै नो पठाए हार जियो गुफांदर रख कै वाजा पौन वजाया वजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए बावनी एक ना दसवां दर द्वार दिखाया तह अनेक रूप नाव नव निंद दिशांत न जाई पाया कह नानक हर प्यारे जियो गुफांदर रख कै वाजा पौन वजाया एह साचा सुहिला सचै कर गाव गाव तो सुहिला कर सचै जिथे सच दे आवे सच जावे जा तद बावे गुरमुख जन बजावे ए सच सभन का खसम है जिस बख्शे सुजन पावे कहे नानक सच सुहिला सच कर गावे आनंद सुनो बड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभु पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पए सरसे पूरे गुर ते जानी

गाइय आत्म रंग सरणी पावन नाम त्यावन सहज समावन संग रहाउ जन के चरण वसै मिरहि अरहि।

0: गई सच सुमाया सच सुमाया सच सुमाया
1: तो मैंने कहा तो आया गुजर पाते जाने आज कल।

ऊपर काली है, ऊपर काली है, ऊपर काली है। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਦਿਲ ਫਿਰ ਬਿਗਨ

सुखमनी सुखमृत प्रणाम भगत बिना कारनंद श्राम श्लोक इको ओंकार सतगुर प्रसाद आद गुर ए नमः जीवाद गुर ए नमः सतगुर ए नमः श्री गुरुदेव ए नमः सतनाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सौ पावो कर कलेष तन्मह मिटावो सिमरो जात विसंवर एक नाम जब जगन तनेक वेद पुराण सिमर सुधाकर कीने राम नाम किया कर किनका एक जित जी बसावे ताकि महिमा बनी नयावे काकी एक दस तुहारो नानक अनसंग मोह उधारो सुख मनी सुख अमृत प्रणाम भक्त जना कह मंद सराम रहाओ प्रभु कह सिमरन गर्भ न बसा प्रभु कह सिमरन दूप जम नसा प्रभु कह सिमरन काल पर हरा प्रभु कह सिमरन दुश्मन तरा प्रभु सिमरत सच विघन न लागै प्रभु कह सिमरन अंधन जागै प्रभु कह सिमरन पौ न व्यापै प्रभु कह सिमरन दुख न संतापै प्रभु का सिमरन साध का संग सर्वन दान नानक हर रंग प्रभु का सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध प्रभु का सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभु का सिमरन जल तक पूजा प्रभु का सिमरन बिन सह दूजा प्रभु का सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभु का सिमरन दरगह मानी प्रभु का सिमरन हो सो भला प्रभु का सिमरन सुफल फला से सिमर है दुनिया सिमराए नानक ता कह लागो पाए प्रभु का सिमरन सब ते ऊंचा प्रभु का सिमरन उदरे ऊंचा प्रभु का सिमरन कृष्णा बुझा प्रभु का सिमरन सब ते सुझा प्रभु का सिमरन नाही जम त्रासा प्रभु का सिमरन पूर्ण आसा प्रभु का सिमरन मन की मल जाए अमृत नवरज महे समाए प्रभु जी बस है साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभु को सिमरहे से तनवंते प्रभु को सिमरहे से पतवंते प्रभु को सिमरहे से जन परवान प्रभु का सिमरहे से पुरुष प्रधान प्रभु को सिमरहे से देम उताजे प्रभु को सिमरहे से सर्व के राजे प्रभु को सिमरहे से सुखवासी प्रभु को सिमरहे सदा बनासी सिमरन ते लागे जन आप दयाला नानक जन की मंगेर वाला प्रभु को सिमरहे से परोपकारी प्रभु को सिमरहे तन सज बलहारी प्रभु को सिमरहे से मुख तो आवे प्रभु को सिमरहे तन सुख बिहावे प्रभु को सिमरहे तन आत्म जीता प्रभु को सिमरहे तन निर्मल रीता प्रभु को सिमरहे तन आनंद कनेरे प्रभु को सिमरहे बस है अनेरे संत कृपा से अंधन जाग नानक सिमरन पूरा भाग प्रभु कह सिमरन कार्य पूरे प्रभु कह सिमरन कहू न चूरे प्रभु कह सिमरन हर गुण बानी प्रभु कह सिमरन सहज समानी प्रभु कह सिमरन निह चलियासन प्रभु कह सिमरन कमल बिगासन प्रभु कह सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभु सिमरन कांत न पार स्नेह से जन जन को प्रमया नानक कंजन करनी पाया हर सिमरन कर भगत प्रटाए हर सिमरन लग दे दुपाए हर सिमरन भय से जति दाते हर सिमरन नीच चह पुंत जाते हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन की ओ सगल अकारा हर सिमरन मह आपन अंकारा कर कृपा दिशा बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया सुखमनी सुखमृत प्रणाम भगत जना कह मंद सराम सलोक दीन दर्द भंजना कड़कनाथ अनाथ संत मारी आयो नानक के प्रसाद सतनाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी जय मात पिता सुतनी तन भाई मनुआ नाम तेरा संत आई जय मह भयान दूत जमदला तह केवल नाम संग तेरा चला जह मुश्किल हो गया तो भारी हर को नाव खन्मा है उधारी अन पुनः चरण करत नहीं करा हर को नाव कोट पाप पर हरा गुरमुख नाव जप हो मन मेरे नानक पाव हो सुख नेरे सब सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जब तुह सुखिया लाख करोरी बंद न पर हर का नाम जब तुम्हें करा अन

0: रंग कितना बुझावे हर का राम जब त्याग आवे जब मार्ग हो जात अकेला तह हर नम संग हो सहेला ऐसा नाम सदा त्याया है नानक गुरमुख परम गत पाया है सूरत नहीं कोर लखदाही नाम जब तह पार पराही अनक बिगड़ गया है सिंगार है हर का नाम तत्काल उधार है अनक जौन जन्म मर जाम नाम जोत पावे विश्राम हम मेरा मलकब हूं न तो वह हर का नाम कोट पाप हो वह ऐसा नाम जप हो मन रंग नानक पाया साध कै संग जे मार्ग के गण जाहे न कोसा हर का नाम संतोषा जे पैंड महंत गुबारा हर का नाम संग जियारा यह पंथ तेरा को न सियानू हर का नाम तह नाल पछानू जय महा भयान सबस बो काम तय हर के नाम की तुम ऊपर श्याम जहत का मंत्र जो करका है तय नानक हर हर अमृत बरका है भक्त जिना की बरतन नाम संत जिना कह मंद सराम हर का नाम दास की ओट हर का नाम दृजन कोट हर जस कर संत दिन रात हर हर औखद साध कुमात हर जन कह हर नाम दान पार ब्रह्म जन की नोदान मंथन रंग रते रंगे कह नानक जन कह दृत विवेक है हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर का नाम जन को तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जब तो कब पर न भंग हर का नाम जन की वडियाई हर का नाम जन को बपाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जब कुछ न है वियोग जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजा हर हर देवा हर हर जन का मालिक जीना हर धन जन को आप प्रभु दीना हर हर जन का ओत तानी हर प्रताप जन अवरण जानी ओत पोत जन हर रत राते सुन समाध नाम रसमाते आठ पहर जन हर हर जपै हर का भक्त परत नी कपै हर की भक्त मुतबो करे नानक जन संग के ते करे पार जात एहो हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सबसे उत्तम हर की कथा नाम संत दर्द दुख लता नाम की महिमा संत रिदवसा संत प्रताप दुर्ग सब नसै संत का संग वड भागी पाया संत की सेवा नाम से आई है नाम सुल खशवन होए नानक गुरमुख नाम पावे जन होए सुख मनि सुख अमृत प्रभ नाम भक्त जिना कह मंद राम श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति देखे सर संडोल तू इस नाही हर हरे नानक नाम मोल सतनाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान पर शास्त्र सिमृत विख्यान योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सब त्याग मन बद्धे क्रिया अनक प्रकार किए बहु जितना पुन दान होमे बहु रतना श्री घटा होमे कर राती वर्तनेम करे बहु पाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड सरसी है अगन माहे होमत प्राण कनक भैवर भूम दान न्योली कर्म करे बयासन जैन मार सुन्य साधन निमुख निमुख कर शरीर कटावे तो होमे मैल न जावे हर के नाम संसर कुछ नाहे नानक गुरमुख नाम जपत जप पाहे मन कामना तीर्थ देह छुटै गर्भ गुमान न मन ते हुटै सोच करै दिन सुहर रात मन की मैल न तन ते जात इस देही को बहु साधना करै मन ते कहु न बिख्या करै जल धोवै बहु देह नीत सुभ का होय काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उतरे उतरे बरतत बहुमूच बहुत ध्यान को जम का भव व्याप है अंक जतन कर कृष्ण ना त्राप है तेक अनेक अगर नहीं बुझा है को रूपा कर गह नहीं सिजा है छूट ना ही ऊ प्याल मोहे व्याप है माया जाल अवर करतूत सभी जमदान है गोविंद गोविंद भजन बिन तिल ही मान है हर का नाम जब तो दुख जाए नानक बोले सह सुपाए चार पदार्थ जे को मांगा है साध जिना की सेवा लागा है जे कोई अपना दुख मचावा है हर हर नाम हृदय सदगावा है जे कोई अपनी शोभा लो रहा है साध संग ए होमे शोर है जे को जन्म मरण से डर है साध जिना की सरनी पर है जिस जन का प्रभ दर्श से आता नानक ताके बल बल जाता सरल पुरख में है पुरख प्रधान साध समझा कर के अभिमान आप को जो जाने नीचा बहु गणिया सब से ऊंचा जंका मन हो सब श्री न हर हर नाम तन कर कर सीना मन अपने ते बुरा मिटाना के खाए सब सृष्ट साजना सुख दुख जन समृष्टेता नानक पाप पुन नहीं लेता मेरे धन को धन तेरो नाव सारे को नाव तेरा खाओ निमाने को प्रो तेरो मान सब कटा को देव दान करण कराओ नहार स्वामी सब कटा के अंतरयामी अपने गात में ध्यान हो आते अपने संग आप रवराते तुम्हारी उत्सुक तुम से हो नानक अवरण जान सकी हो सर्व धर्म मह श्रेष्ठ कर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सर्व क्रिया मह उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मह हिरिया सर्व उद्यम मह उद्यम भला हर का नाम जप हो जी भरा सर्व बानी मह मृत बानी हर को जस सुन रस बखानी सर्व स्थान से ओ उत्तम स्थान नानक जिहे कटो से हर नाम सुखमणि सुख अमृत प्रभु नाम भक्त जिना कह मन विश्राम श्लोक निर्गुण आर अन्या को प्रसुरात माल जिनकी आसि तरक नानक ने ही नाल सत नाम श्री वाहिगुरु अस्तपति गमैया के गुण से पुरानी कवन मूल से कवन दृष्टानी जिनको पास वास सिगारया गर्भ अवन में जिन्हें उबारया बार बलिस्था से चारे दूध पर यौवन भोजन सुख सूध दुर्द पया ऊपर साव सहन मुख पया बैठो दैन यह निर्गुण गुण कशु न बूझ जाए दोष ले तो नानक सी जाए ये प्रसाद कर ऊपर सुबह है सत पर आत्मीत बनता तुम हसता है यह प्रसाद की है तीसर गला सुखदायी पवन पाव का मुला जिहे प्रसाद को जिहे सब रसा सर्व समग्री संग साध बसा दीने हस्त पाव कर्ण निर्तर रचना तिस है त्याग और संरचना ऐसे दो मूड अंग दयाते नानक पर ले हो प्रवयाते आर अंत जो राखन हार तिस से प्रीत न कर द्वार जाकी सेवा नव निग पावै ता से मूड़ा मन नहीं लावै जो ठाकुर सर सदा हजूरे ताको वंदा जानत दूरे जाकी पहल पावे दरगह मान सहज सारे मुंह दे जान सदा सदाए वो फूल नहार नानक रखन हार पार रतन के आव कौदी संग रचाए साच छोड़ झूठ संग मचाए जो चढ़ना सो अस्थिर कर मान जो उमन सो दूर पराने छोड़ जाए जितना कर्म करे संग सहाई तिर पर हरे चंदन लेट उतारे तो होए गर्दवती पस्म संग होए अंधकूप में पतद विकराल नानक कार लेहु प्रभु दयाल करतूत पशु की मांस जात लोक पुचारा करे दिन रात बाहर के संतर मल माया शब्द नहे कुछ करे छिपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्याप लोग सुहान अंतर अगन बाहर संसुआहा गल पात्र कहते तरह था जाके अंतर बसे प्रभु आप नानक से अंतर समात सोने अंदर कैसे मार्ग पावे कर गह ले और निभावे कहां बुझात बुझे डोरा निकले तो समझे पोरा कहां बिसंतर गावे गोंग जिसन कर तो ईश्वर भांग कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तुम उस गवन करतार करना मैं दीन बेनती कराए नानक तुम्हारी कृपा कराए संघ आई सो आवे नसीत जो बराई तो सुप्रीत बलवा के ग्रह की ईश्वर बसाए आनंद के माया रंग रसाए गरुड़ कर माने उन्हें प्रतीत कान आवे मूढ़े चीत बैर प्रो काम प्रो मोह झूठ विकार मा लो प्रो यह जूत बिहाने कई जन्म नानक राख लो आसन कर कर्म तू ठाकर तुम पै अरदास जियो पिण सो तेरी रात तुम मात पिता हूं बारक तेरे तुम्हारी कृपा मैं सुख नेरे कोई नहीं जाने तुम्हारा अंत ऊंचे ते ऊंचा तू अंत सब समग्री तुम्हारे सुकर धारी तुमते हुए सुहा व्यापारी तुम्हारी गत में तुम ही जानी नानक दास सदा कुरबानी सुखमणि सुख अमृत प्रभु नाम भक्त जिना कह मन श्राम श्लोक देन हार में छोड़ कह लाभ अंत आए नानक कहुन सी जई बिन नावे पत जाए सतनाम श्री वाहिगुरु अस्तपति दस वस्तु ले पाचा पावै इस बस कारण बिकोट गवावै एक पीना दे दस पी हिर ले सौ मुड़ा को कहा करे जिस ठाकुर से नहीं चारा ताको की जा कर नमस्कारा जाके मन लगा प्रमीता कर सूता हुमन उठा जिजन ने अपना हुक्म मनाया सर्व शोक नानक छन पाया अग्न साहो अपनी देरात सात पीत व्रत आनंद उलास अपनी अमान कुछ बाहर साहो ले अज्ञानी मन रोज करे अपनी प्रजीत आप ही खोवे बाहर का विश्वास न होवे जिसकी वस्तु त्यागे राखे मित्र की आज्ञा माने माते उससे चौ गुण करे निहाल मान सह दयाल अंक पात में आके एक सर प्रभूत जाने अनेक व्यक्ति चाया प्योर लावे उसमें से वो मन पिछतावे जो दिशे तो चल न हार लग करे हो तया न हार मिटाऊ से जो लावे नहीं तब तो आत्मे आवे के मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नान के आप ले लाई मिथ्या तन धन कुटम सुगाया मिथ्या उमेन समाया मिथ्या राज जोगन तरमाल मिथ्या काम करो विकराल मिथ्या रथ भक्ति यो बस्तरा मिथ्या रंग संग माया ते सत्ता मिथ्या त्रो मोह मान मिथ्या पशु प्रकट गुमान अस्थिर पवसर की तरण नानक जप जप जी अखिल चरण मिथ्या सरवण पर निंदा सुने मिथ्या हस्त पर दब को मिथ्या नेत्र पेट पर त्रया रूपार मिथ्या रचना तो स्वाद मिथ्या चरण पर विकार को सावे मिथ्या मन पर लोग लुभावे मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बात ले विकारा जिन बुझे मिथ्या सबका है सफल देवे नान कर नाम लय साथ की आज्ञा पाठ बिना से हो सूचा गिरता नाम बिना संयान दय मुखिया उतार के दुर्गंध दिन सिमरन दिन रहन गिरता बिहाये मेघ बिना जो की जाए गोविंद भजन दिन जैसे सो काम जो कृपण के निराश दाम तन तन से जन जे कट बसे हर नाम नानक ता सह बुल जाओ सह जगत सर कुमार मन प्रेम को गढ़ला करो जानन हर गुरु प्रदीन बार तेगन कर भीन अगर उपदेश है आसना कराए आस जग जन में मराए जिसके अंतर्गत निरंकार है तुकी सी तेरे संसार जो तुम पाने तिन प्रभु जाता नानकियों जन चरण प्राता करो बेसी पार ब्रह्म सब जाने अपना किया या पैमाने आप है आप सत नवेरा से दूजना उसे बिजात नेरा उपाल से अंतर से रहत सब के जाने आत्म की रहत इस बार लय लाए तन तन तरह समाए तो से जिस कृपा करी नुमक जपनान करी सुखमणी सुखमृत प्रणाम भक्तिना के मन सराम सलोक काम क्रोध लो मोह मिट जाय हमदेव नान करो करनाती कर प्रसाद गुरुदेव सतनाम श्री वाहगुरु अस्पति जे प्रसाद सिद्धि अमृत खाहे तिरसाद पुरख नुमाहे जे प्रसाद सुगंध तो तन लावै तिसको स्मृत प्रंग पावै जे प्रसाद बसे सुख मंदर ते चाहे श्रवण अंदर जे प्रसाद ग्रह सुख बसना आसै सुमृत तृसना जे प्रसाद रंग रस भोग नान सदा ध्याये चाहन जोग जे प्रसाद पाठ तुमर लावै है ते चाहे पतिवर लुभावै है जे प्रसाद सही सही जाय मन आर पर तांका जस गाही जाय जे प्रसाद कोई सब को माने मुक्ता को जिस समझाना है जे प्रसाद हृदय का धर्म मन सदा चाहे केवल पार ब्रह्म प्रभु जब तो दल है मान पावा है नान पाव से भी कर जावा है जे प्रसाद रोकन संदेही ले लाओ सतराम संदेही जे प्रसाद रोला रहे तो मन तो पावे हर हर जो कहे तो जे प्रसाद है सगल से दर काके मन सरनी प्रोटागर प्रोटाक है जे प्रसाद कोई को न पहुंचे मन सास सास मुरु प्रभु के जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक की भक्त करे जे प्रसाद अतुकन कर जय मन से स्मृति वास की जाए जे प्रसाद सुहस्ते सवारी मन से को पत्नी प्रभु को न विसारी मन से प्रभु को कहु न विसारी जे प्रसाद बाप मिल सना राय प्रभु अपने मना जेन तेरी मन बंस बनाई उठ बैठ सब से त्याई जे त्याय जो एक लख नानक तेरी रखे जे प्रसाद कर पुनदान मनाट पैर कर ध्यान जे प्रसाद तो चार जहाई तिस पर को सा सा चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो पर सुमरता अनूप जे प्रसाद तेरनी की जात सो पर सुमरता दिन रात जे प्रसाद तेरी पत्र है गुरु प्रसाद नानक जस है जे प्रसाद सुने कारण नाद जे प्रसाद के विमाद ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲੇ ਹੈ ਮੁੜ ਪ੍ਰਸਨਾ, ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖਾ ਜੇ ਲਗਨਾ, ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤਰ ਚਲੈ, ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਪੁਰਨ ਚਲੈ, ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਮੁਖ ਪਾਵਾ ਹੈ, ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖਾ ਸਮਾਵਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਹੈ ਉਸ ਲਾਗੋ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਜਾਗੋ, ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਪਰ ਸੰਸਾਰ ਸਿਸਤਰ ਕਮੂਲ ਮਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਿਮਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਾਪ ਜਾਪ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਸਹਿ ਜਾਣ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਏ ਸਾਚ ਰਿਮਨ ਮੇਰੇ ਸਿਪਾ ਸਵਰਾਚ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀਰਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਗਾ ਜੇ ਹੋਏ, ਆਓ ਜਗਾ ਜੇ ਸੋਨਾ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆ ਦੇ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੇ ਮਨ ਕੋਏ, ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਤੁਮ ਮਤ ਉਤਮ ਹੋਏ, ਸਰਬਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ, ਆਪੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਮੂ ਲਿਆ, ਜੇ ਤੇ ਤਲਾਓ ਤੇ ਤਲਗੇ ਹਰਨਾਥ, ਨਾਨਕੇ ਕਿਸੀ ਨਾਨਕ ਇਨ ਕੈ ਕਰਚਨਾ ਆਪ, ਸੁਖਮਣੀ ਸੁਖ ਅਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗਤੀ ਨਾ ਕੈ ਮਨ ਸਰਾਮ ਸਲੋਗ, ਅਗਮਦਾਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ, ਜੋ ਜੋ ਕੈ ਤੁਮ ਸਾ ਹੋਏ, ਸੁਨੀ ਕਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ, ਸਾਧ ਜਿਨਾ ਕੀ ਅਚਰੀ ਕਥਾ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸਤਪਰੀ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮੁਕੂਜਲ ਹੋਤ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੁਸਲੀ ਹੋਤ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਟੇ ਅਭਿਮਾਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਟੈ ਸੋ ਗਿਆਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੇ ਪ੍ਰਵਨੇਰਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤ ਨਵੇਰਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇ ਨਾਵਰਤਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਉਪਰ ਯਤਨ, ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨੇ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਨਾਮ ਸਾਧ ਜੋ ਸਭਾ ਪ੍ਰਮਾਏ ਸਮਾਨੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਗੋਚਰ ਮਿਲਾਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਵੈਭਵ ਪੰਚਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਰਤ ਪੰਚਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਣ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ, ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਤੂੰ ਧਾਵੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਮਨ ਭਾਵੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੈਂ ਤੇ ਭਿੰਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੰਗੀਤ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਾਨ ਪਨੀਤ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਸੇ ਨੀ ਬੈਰ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਗਾ ਪੈਰ, ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾਨੀ ਕੋ ਮੰਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣੇ ਪਰ ਮਨੰਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਆਉਣਾ ਹੀ ਤਾਪ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਤੇ ਸਭ ਆਪ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸਭ ਵਡਾਈ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣੇ ਆਈ, ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਨ ਕਹੂੰ ਤਾਵੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੋ ਪਾਵੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸੋ ਚਰਲਾ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਅਜਿਰਤ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸੋ ਸੰਗ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਕੇ ਸੰਗ ਮੈਲ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਦਰਿਆ ਸੋ ਧਰਮ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਕੇਲ ਪਾਤ ਬ੍ਰਹਮ, ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਪਾਇਆ ਨਿਧਾਨ, ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਕੁਰਬਾਨ, ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਜਨ ਵੀ ਪੁੱਤਾਂ ਨਿਸਤਾਰ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਸੰਗ ਸੋ ਤਨ ਪਾਵੈ, ਜਿਸ ਸੰਗ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕਰ ਸੇਵਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸੁਭਾ ਸੁਰ ਦੇਵਾ, ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਸੰਗ ਪਾਪ ਲਾਇਣ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਰਤ ਗੁਣ ਗਾਇਣ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸਰਬ ਤਨ ਗਮ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸਭ ਜਿਨਾਮ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਕਿਸ ਘਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਕਲੂਪ ਹਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਰ ਪਰ ਹਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਯਮ ਸੁਰ ਸਹਿਲਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਗਰਤ ਹਰ ਮਿਲਾ, ਜੋ ਇੱਛਾ ਸਹੀ ਬਲ ਪਾਵੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨੰਬਰ ਸਜਾਵੈ, ਪਾਰ ਬੰਦ ਸਾਧ ਜਗ ਵਸਾਏ, ਨਾਨ ਕੁਦਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦਸਾਏ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਗੁਣ ਹਰਨਾ ਹੋ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਨਮਨ ਕਾ ਵਿਸਰਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰ ਪਰ ਨਿਸਤਾਰ ਹੈ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਲਗੇ ਪ੍ਰਮੀਤਾ, ਸਾਧੂ ਕੇ ਸੰਗ ਕਰਕੜੀ ਸਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਪੈ ਆਗਿਆ ਕਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਈਆ ਮਾਰੀ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਤੇ ਸਰੋਗ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੇ ਤੇ ਸੰਜੋਗ, ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇਵ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਕ ਨਹੀਂ ਤਾ ਵਖਿਆਨਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤੇ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੁਭਾ ਕਾ ਨਾ ਹੀ ਅੰਤ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੁਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੁਭਾ ਉੱਚੇ ਉੱਚੀ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੁਭਾ ਮੂਲ ਤੇ ਮੂਚੀ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੁਭਾ ਸਾਧ ਬਣਿਆਈ, ਨਾਮ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨਾ ਭਾਈ, ਸੁਖਮਣੀ ਸੁਖ ਅਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਭਗਤੀ ਨਾ ਕਹਿ ਮਨ ਪ੍ਰਾਣ ਸਲੋਕ, ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨ ਪੇ ਖਾਏ ਸੁਜਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਲਖਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਨ ਲੇਪ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲਿਆ ਲੇਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਨ ਨਿਰਦੋ, ਜੈਸੇ ਸੁਰ ਸਰ ਕੋਸੋ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ, ਜੈਸੇ ਰਾਜਾਂ ਕੋ ਲਗ ਸਲਪਮਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਧੀਰਜੇ ਕੇ ਜੋ ਬਸਦਾ ਕੋ ਬੋਧੇ ਕੋ ਚੰਦਨ ਲੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕਹਿ ਗੁਣਾਓ, ਨਾਨਕ ਜੋ ਭਾਵ ਕਾ ਸਹਿ ਸੁਭਾਓ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਨ ਲਾਗੇ ਗਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਜੈ ਘਰ ਉਪਰ ਆਕਾਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਿਤ ਸਮਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉੱਚੇ ਉੱਚਾ, ਆਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਹੀ ਗਨ ਪੈ, ਨਾਨਕ ਜਲ ਪ੍ਰਗਾਪ ਕਰੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਕਿਰੀ ਨਾ, ਆਤਮ ਰਭ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕੀ ਸਭ ਉਪਰ ਮਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਕੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਪਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸੁੰਦਰਤੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਮਰਤ ਵਰਤੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੂਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਜੂਤਾ,
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक उपयात, ब्रह्म ज्ञानी पानी बनाक, ब्रह्म ज्ञानी का गरीब माहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार माहा, ब्रह्म ज्ञानी का नाही संदा, ब्रह्म ज्ञानी ले ताप बंदा, ब्रह्म ज्ञानी का हुए तो फला, ब्रह्म ज्ञानी तो फल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जब सब संसार, ब्रह्म ज्ञानी का एक तारंग, ब्रह्म ज्ञानी का बसे प्रसंग, ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी का नाम परिवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जात, ब्रह्म ज्ञानी अम्बोध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी का मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी का खर सदानंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सही निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का देवता, ब्रह्म ज्ञानी एक समता, ब्रह्म ज्ञानी का हुआ चिंता, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र, ब्रह्म ज्ञानी जिसका प्रयास, ब्रह्म ज्ञानी का बड़े प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दस वर्ष आगे पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को पूज्य है महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी का सर्व मनमा है, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का प्रत्यंजा दापर है, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर, ब्रह्म ज्ञानी की मत कौन मुखाना है, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाना है, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी तो जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जीव जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पूर्ण दाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का कल्याकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी के सब ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सब का कही, सुखमणि सुखमन करुणा भक्तियों के मन शरण श्लोक, और सारे जो अंतर नाम सर्व न देखे भगवान, निम प्र निम प्रापर नमस्कार, नानको अपर सैल नमस्कार, सत्य नाम श्री वाहे गुरु अष्टपति, नित्यानंद ही रचना तर्क, मन में प्रीत नरंजन दर्क, पर तेरा रूप न पेखा नेत्र, साध की चाहे टहल सब संघेत, करण तुने कौन की निंदा, सब ते जाने अस्तु मंदा, गुरु प्रसाद विद्या पर है, मन की बात नमन से कर, इंद्रिय जित पंच दो ते रह कर, नानक कोट मदे को ऐसा प्रसोक, वैष्णो को जित ऊपर सो प्रसान्न, विष्णु की माया ते वचिन्न, कर्म कर्त हो निह कर्म, सिर्फ वैष्णो का निर्मल कर्म, कहूं फल की इच्छा नहीं बाचा है, केवल भक्ति की संग्राचा है, मंत्र यंत्र सिमरन गोपाल, सब ऊपर कृपाल, आप दिल्ली अवरह नवज पाल है, नानको वैष्णो प्रमुख पाल है, जो मन प्रबोध है, राम नाम आत्मा है शोध है, राम नाम सार रती है, पंडित का है उपदेश जी है, हर की कथा वर्ग बता है, सौ पंडित वर्ग जोड़ने आया है, देश पुराण समर्थ पूजे मूल है, सो घूमने जाने स्थूल, क्या वर्णा को देख देख, नानक उस पंडित को सलाह देख, दी मंत्र कर को ज्ञान, क्या वर्णा में जगह को नाम, जो जो जगह सृजित हो संपादन हुए, कर के स्वतंत्र उतार है, उस पर पात्र को तारा है, सर्व रूप का नाम, कल्याण रूप में काम, कौन जुट किता न पाइया धर्म, नानक मिले गया सर्व कर्म, जिसका मन पार ब्रह्म का निवास, जिसका नाम सतराम दास, आत्मराम से नगरी आया, दास संतन पहचान पाया, सदा निर्देश हर ज्ञान, सौदा दृगे प्रमाण, अपने दास को आप कृपा कराया, किस दास को सुखो जी कराया, सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुट नानक राम दास, प्रभु की आप दया संहितावै, जीवन मुक्त कहावै, सैसा हर्ष सैसा वो सुसोग, सदानंद सह नहीं देव, तैसा सुवर्ण तैसी उसमाठी, तैसा अमृत तैसी जिस काठी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो वर्ताए साई जुगत, नानक ओपुर प्रिय जीवन मुक्त, चार ब्रह्म के सवे चाओ, जित जित कर जाते, तैसा तिन नाओ, आपे कर्म कराम जोग, प्रभावे सही गुण होग, सत्र आप हुए अंत तरंग, लखन जाए पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा प्रगाश, पार ब्रह्म सरसा विनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पै निहाल, सुखमणि सुखमृत प्रणाम, भक्त जिना से मन सराम, सलोक उष्ट कर ज्ञान, अंतन पर आधार नानक रचना प्रवृति बोधन प्रकार सतनाम श्री वाहिगुरु। कई कोट है पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट तहसीलवासी, कई कोट मन पर नहीं उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट पितर होते, कई कोट आत्म के अंतर है, कई कोट कब काल विचार है, कई कोट नौतन नाम से आवा है, नानक करते कांत न पाव है, कई कोट पह अभिमानी, कई कोट अंधा ज्ञानी, कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अभ्यज्ञ आत्म कोर, कई कोट पर धर्म को ग्रह है, कई कोट पर दुगुना कर है, कई कोट माया कर्म माहे, कई कोट पर देश पर मारे, जित जित लावा तित तित लगना, नानक करते कि जाने करता रचना, कई कोट शब्द जति जोगी, कई कोट राज रक्त होगी, कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पाथर दरित निप जाए, कई कोट पवन पानी बह संतर, कई कोट देश को मंडल, कई कोट सुशील सूर नक्षत्र, कई कोट देवदान सिर इंद्र सिर चतर, सर्व समग्री अपने सूत धार है, गुरु नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है, कई कोट राज को तामस साथ, कई कोट देव प्राण समृत हर साथ, कई कोट की रत्न समुद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चित जीव, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण खीर, कई कोट जक्त नर उपसाद, कई कोट सूपर सुपर मृगाज, सतन मेरा सबों के दूर, नानक आप ले तया भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नर्क सुर्ग निवासी, कई कोट जन्म जीव अमर है, कई कोट बहुत जोनी ग्रह है, कई कोट बैठती का है, कई कोट काले सबका है, कई कोट की तनवंत, कई कोट माया में चिंत, जय जय पाणा तय तय रास्ते, नानक सब कुछ प्रभु का है हाथे, कई कोट पाए दरागी, राम नाम संत निवलागी, कई कोट प्रभु को खोजनते, आत्म मह पार बम लहते, कई कोट दर्शन प्रत्यास, संतो मेरे प्रेमनाथ, कई कोट मंग है सत्संग, पार ब्रह्म चलागा रंग, जिनको होया सो प्रसन्न, नानक से अनुसार धन धन, कई कोट खानिया खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट होया अवतार, कई जो कि तीनों विस्तार, कई बार पत्र का सार है, कई संकार, कई कोट कि भात, रुके हुए ब्रह्म है समात, कांत जाने कोय, आपे आप न प्रसोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन हो ते आत्म प्रकाश, कई कोट सबके बेटे, सदा निहारे को नेत्रे, कई कोट नाम रस्ती है, अमर पैसा सद ही जीव है, कई कोट नाम गंगाव है, आत्म रस सुख सहज समाव है, अपने जन को साथ साथ हमारे, नानको ही परमेश्वर के प्यारे, सुखमणि सुखमृत प्रणाम, भक्त जिना कह मंद सराम श्लोक, कर्ण कारण प्रेत है दूसर नहीं कोय, नानक सुख बलहार न जल तल नहीं जल सोए, सतनाम श्री वाहिगुरु। कर्ण क्राम करण जोग जोत पाए सोई होग, खिन्न साथ हो थापन हारा, अपनी किसपारा वारा, उसमें सार अदर अदर आवे, उसमें उपज उसमें समावे, उसमें उच नीच व्यवहार है, उसमें अंतरंग प्रकार, कर देखे अपनी बुढ़ियाई, नानक सब मेरे हाथ माई, प्रभ पावे मनुष जब पावे, प्रभ पावे ता पा संतरावे, प्रभ पावे दिन सा फेरा खाए, प्रभ पावे ता हर दिन पाकाए, प्रभ पावे ता पत तो उधारा, आव कराए अपन विचार, दोहा सुना का आप स्वामी, खेले बिगता अंतरयामी, जो पावे तो पार करावे, नानक दृष्टि अव न आवे, कहो मनुख ते क्या भयावे, जो सिस पावे तो ही खरावे, इस गाय हाथ होए ता सब खेले, जो सिस पावे तो ही करे, अनजान से बेचा में हर चाय, ये जानते अपने आप बचाए, परमे पूला दे निस्तावे, नुख में चार कुन प्रयावे, हर कर पर जब नहीं पकड़े, नानक से जन्ना मिले, खेन में नीच की थोराज, पार ब्रह्म ग्रीव नवाज, जाका दृष्ट कसुनावे, तिस्पुर काल रह दिस्पुरतावे, जाको अपनी करे दस्तीस, सांका लेखा न गण गिरदीस, जियो पिन सब की रास, कर कर पूर्ण ब्रह्म प्रगास, अपनी मन से अवगुणाई, नानक जीव है देख बढ़ाई, इसका बल ना ही सहास, कर्ण करावन सर्व को नाथ, आज्ञाकारी दूसरा जियो, जो पावे सोई सुन थियो, कबू हूँ ऊंच नीच में हंसा, कबू हूँ सोग हर्ष हंसा, कबू हूँ निंद चिंद व्यवहार, ਸਵਾਲ ਕਬੂ ਹੁੰਦੇ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰ ਨਾਨਕ ਆਤਮ ਲਾਵਹਾਰ ਕਬੂ ਨੇ ਖਾਇਆ ਭਾਤ ਕਬੂ ਸੋਇਆ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਬੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵਿਕਰਾਲ ਹੈ ਕਬੂ ਸਰ ਸਿਵੋ ਤਰਵਾਲ ਕਬੂ ਗੁਰਦੈ ਹੈ ਬਦਲਾਇਆ ਕਬੂ ਕੇ ਸਾਰੀ ਨੀਤ ਕਰਤਾ ਜਾ ਕਬੂ ਹਰ ਕੀਰਤ ਮੈਂ ਆਵੈ ਕਬੂ ਭਰਾਪਲਾ ਕਹਾਵੈ ਜੇ ਪ੍ਰਭਾ ਕੈ ਧੀ ਰਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਬੂ ਹੋਏ ਪੰਡਿਤ ਕਰੇ ਬਖਾਣ ਕਬੂ ਮੋਹਨ ਧਾਰੀ ਲਾਵੈ ਧਿਆਨ ਕਬੂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਬੂ ਸਿਰ ਸਾਧਕ ਮੁਖ ਗਿਆਨ ਕਬੂ ਕੀਰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਏ ਜੀਆ ਅਣਕ ਜੋਨ ਪਰਮੇ ਪਰਮੀ ਗਿਆ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜੋ ਸਵਾਮ ਜੀ ਦਕਾਲ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਤੇਨ ਚਾਵੈ ਜੋ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਤੇਰੀ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ ਕਬੂ ਸਾਧ ਸੰਤੇ ਉਪਾਇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਵੈ ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਥਾਨ ਪਾਣੀ ਵਿਨਾਸ ਮੰਤਨ ਨਾਮ ਹਰਤੇ ਚਿਰੰਗ ਬਦਾਵ ਤੇ ਪਾਰਿਓ ਤੇ ਸੰਗ ਜੋ ਜਲ ਮਹਿ ਦਲ ਹੈ ਕਟਾਨਾ ਤੇ ਜਿਤੀ ਜਿਨ ਸਮਝੋ ਸਮਾਨਾ ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਇ ਬਿਸਰਾਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ਸੁਖ ਮਨੀ ਸੁਖ ਅਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਿਨਾ ਕਹਿ ਮਨ ਸਰਾਮ ਸਲੋਕ ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਬ ਗਲੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਰਾਜ ਮਾਨ ਸੋ ਨਸਪਤੀ ਹੋ ਸਿਆਣ ਸੋ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਜੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਸੀਤਾ ਕਾ ਜੰਤਰ ਆਪ ਸੋ ਕਰਮ ਸਹਾਵੈ ਜਨ ਮਰੇ ਤੋ ਜੋਨ ਪਰਮਾਵੈ ਤਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰੇ ਗੁਮਾਨ ਸੋ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੈ ਹਿਰਦੈ ਗ੍ਰੀ ਦੀ ਸਾਰਾ ਨਾਨਕ ਕੀਆ ਮੁਤਾਬ ਸੋ ਸਾਰਾ ਸਰਵੰਤਾ ਵੇ ਕਰ ਗਰਭਾਵੈ ਸਰਵ ਸਮਾਨ ਕੇ ਸੰਗ ਨਿਗਾਵੈ ਦਹ ਲਖਰ ਮਨੁ ਕੋ ਪ੍ਰਤਿਆ ਪਰ ਕੀਰਤਨਤਾ ਕੋ ਹੈ ਬਿਨਾਸ ਸਭ ਤੇ ਆ ਜਾਣੇ ਬਲਵੰਤ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਹੈ ਕਿਨ ਮੈਂ ਹੋਏ ਗਏ ਸਮਾਨ ਸਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਦਾਇਆ ਪ੍ਰਮਕਾਰੀ ਤਰਵਲਤ ਕਰੇ ਕੁਵਾਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾਤਵ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਮਾਨ ਹੋਰ ਤਮ ਕਰੇ ਅਵਤਾਰੇ ਸਵਰਨ ਪਾਵੈ ਸਵਲੇ ਗਠਾਰੇ ਅਨਕ ਪ੍ਰਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਗਏ ਅਵਤਾਰ ਅਨਕ ਯਤਨ ਕਰ ਆਤਮ ਹੀ ਗਰਾਏ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਕੋ ਕਹਿ ਕੇ ਗਰਾਏ ਆਪ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਸੇ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੈ ਸਰਵ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮਨ ਹੋਏ ਕਉ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੇ ਮੁਝੇ ਕਛ ਹੋਏ ਸਭ ਇਸ ਕੋ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਜਬ ਇਸ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ ਸਭ ਲਗ ਗਰਭ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਜਬ ਤਾਰੇ ਕੋ ਗਹਿਰੀ ਨੀਤ ਸਭ ਲਗ ਨੇ ਚਲ ਨਾਹੀ ਪੀਤ ਜਬ ਲਗ ਮੁਖ ਮਗਨ ਸੁਮਾਏ ਸਭ ਲਗ ਧਰਮ ਰਹਿ ਦੇਖ ਜਾਏ ਰਬ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੂਟਾ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਅਨੰਤ ਨੂੰ ਟੂਟਾ ਹੈ ਸਹਿਸ ਕੱਟੇ ਲਖ ਤੋਰ ਧਾਵੈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ ਅਨਕ ਭੋਗ ਦਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ ਨਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਰੈ ਜਿਨਾ ਸੰਤੋ ਨਹੀਂ ਕੂ ਰਾਜੈ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਤੇ ਸੁਖ ਆ ਜਾਏ ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ ਬੜ ਭਗਤ ਸਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਆਪੇ ਆਪ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਆਪ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਤੇ ਹਾਸਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਸਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੋ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਸਭੂ ਕੈ ਸੰਗ ਬੂਝਾ ਦੇਖਾ ਕਰੇ ਵਿਵੇਕ ਆਪੇ ਏਕ ਆਪੇ ਅਨੇਕ ਮਰੇ ਨਾ ਮਿਲਸੇ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਕਰੀ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਆਪ ਉਪਦੇਸਾ ਸਮਝੋ ਆਪ ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥ ਆਉ ਕਿਨੂੰ ਆਪਣ ਵਿਸਤਾਰ ਸਭ ਕੁਛ ਸਭ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਉਸਦੇ ਪਿੰਨ ਕਹਾ ਹੋ ਕਿਛ ਹੋਏ ਸਾਂਤਨ ਤਰੇ ਕੈ ਸੋਏ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਕੌਤਕ ਕਰੇ ਰੰਗ ਅਪਾਰ ਮਨ ਮੈਂ ਆਪ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਏ ਨਾਨਕ ਕਿਨੂੰ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਸੱਤ ਸੱਤ ਸੱਤ ਪ੍ਰਸਵਾਮੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਮੁਖਿਆਨੀ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸਭ ਕੀ ਨਾ ਕੋਟ ਮਦੇ ਸਨੇ ਵਿਰਲੇ ਚੀਨਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਅਪਾਰ ਨੂਪ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਘੜ ਘੜ ਸੁਣ ਸਰਨ ਬਖਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪੰਡੀਤ ਨਾਮ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਨਾ ਕਹਿ ਮਨ ਸੁਸਰਾਮ ਸਲੋਕ ਸੰਤ ਸਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰਾਇ ਸੋ ਜਨੁ ਜਨ ਹਾਰ ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਗੌਰ ਗੌਰ ਅਵਤਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੰਤ ਪੈ ਦੂਖਣ ਅਰਜਾ ਘਟਾਇ ਸੰਤ ਪੈ ਦੂਖਣ ਜਮਤੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੈ ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਣ ਸੁਖ ਸੁਖ ਜਾਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਣ ਨਰਕ ਮੈਂ ਪਾਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਣ ਮਤ ਹੋਈ ਮਲੀਨ ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਣ ਸੋਗਾ ਤੇ ਹੀਨ ਸੰਤ ਕੈ ਹੱਥੇ ਕੋਰ ਕੈ ਨ ਕੋਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਣ ਸਾਨ ਪ੍ਰਪਤ ਹੋਏ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਕਰੈ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸੰਗ ਨਿੰਦਕ ਭੀ ਕਰੈ ਸੰਤ ਕਹਿ ਦੂਖਣ ਤੇ ਮੁਖ ਪਵੈ ਸੰਤ ਕਹਿ ਦੂਖਣ ਕਾਲ ਜਿਉ ਲਵੈ ਸੰਤ ਕਹਿ ਦੂਖਣ ਸੁਰਤ ਜਿਉਣ ਪਾਏ ਸੰਤ ਕਹਿ ਦੂਖਣ ਤ੍ਰਿਗਤ ਜਿਉਣ ਕਰਮਾਏ ਸੰਤਨ ਕਹਿ ਦੂਖਣ ਤਿਸਨਾ ਮੈਂ ਜਲੈ संत का दुखन सब को चढ़ाए, संत का दुखन तेज हो जाए, संत का दुखन नीच निचाए, संत दुखी का ठाऊ को नाहे, नानक संत पावे तावे की गत पावे, संत का निंदक मात ताई, संत का निंदक तिन टिकन न पाई, संत का निंदक महा प्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राजतेहीन, संत का निंदक दुखियार दीन, संत के निंदक कौ सर्व रोग, संत के निंदक कौ सदा दियोग, संत की निंदा दोख में दोख, नानक संत पावे ता पीव मोख, संत का दोखी सदा पवित्र, संत का दोखी किसे का निमित, संत के दोखी को ध्यान लागै, संत के दोखी को सब त्यागै, संत का दोखी महंकारी, संत का दोखी सदा विकारी, संत का दोखी जन्म मराय, संत की दुख न सूत्र कराय, संत के दोखी को ना ही खाओ, नान संत पाय तलय मिलाए, संत का दोखी अग्दी से टूटा है, संत का दोखी कित पाय न पहुंचाए, संत के दोखी को ध्यान फरमाया, संत का जो गुजर पाया, संत का जो अंतर दे ठोसा, जो साथ बने मृत की लोसा, संत के जो की जर कितना है, आपन भी वैसे लिखा है, संत के जो की कवर न रखन हार, नान संत पर ऐसा ले उबार, संत का जो की ओगिल लाए, ये जर के सोन मछली पर फड़ाए, संत का जो की फूका नहीं राजा है, जो पाव थोड़ी नंद नहीं कराता है, संत का जो की से अकेला, संत जो गुआर करके तुम्हारे दो खेला, संत का दोखी कर्म से रह कर, संत का दोखी को मिश्रा कह कर, कीर्तन निंद का तो ही पया, नानक जुग पास ही प्यास, संत का दोखी बिगड़ रूप है जाए, संत के दोखी को दृढ़ में रह जाए, संत का दोखी सदा से खाई है, संत का दोखी न मरण जीवाई है, संत के दोखी की पूजन आता, संत का दोखी चले न रहता, संत का दोख न दृष्टा कोये, जैसा पवे तैसा कोई होये, कया कृष्ण में टैस होये, नानक जन चैस होये, सब करते के होकर निहार सदा ग्रस्त को नमस्कार प्रभ की सब करो दिन रात सह त्याओ सात ग्रात सब कृषि वर्षा किया जैसा कर कसा को सिया अपना खेल आप निहार दूसर कौन कहे विचार जिसनु कृपा करे श्री अपने नाम दे मटपा तो नाम सबस जिना कह मंद सराम सलोक सज हो सियानक सुरजिम सिंह हर हर राय एक आस हर मन रखो नानक दूख भरम पै जाए सतनाम श्री वाहिगुरु मनुख कीते एक व्यक्ति सब जान देवन कोय कह भगवान जिस कह दिया रहे अगाए बहर न कितन लागे आए मारा राखा एक आप मनुख कह कितना ही हाथ किसका हुक्म भूत होए किसका नाम रख अंत परोए सिमर सिमर सिमर प्रवत होए नानक बिघन न लागै कोए उसत मन मह का निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रखना अमृत पियो सदा सहेला कर ले जियो नैन हो पेखा और कारंग साध संग बिनता साध बसंग चरण चलो मार गो गोविंद मिटह पाप जपिए हर गेंद कर हर कर्म सरवन हर कथा हर दरगह नानक उजल मथा बट भागी ते गंजल माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करे विचार ते हनुमंत जनि संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक निशाना एको की हो सो जी जाना नाम समझता मन मानिया नानक स्नेह निरंजन जानिया गुर प्रसाद अपने आप सुजै उसकी जानो तसना बुझै साध संग हर हर जप रहस सर्व रोग ते ओ हर जन रहस अंदन कीर्तन केवल बखयान दृष्ट में सही निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आशा किसकी कटियोजन की पासा पार ब्रह्म की जिस मन फूक नानक सैन लागे दूख जिस को हर प्रव मन किसे आवे बुला नहीं बुलावे जिस पर अपना कृपा करे तो फिर उसको किससे डरा जैसा सा तैसा दृष्टारा अपने कार्य नहीं आसमाया शोध तो शोध तो शोध तो सी गया गुर प्रसाद सत सब बूझया
0: जब देखो तब से किसी मूल नानक सो सुकम सोई अस्कूल न किस जन्म न किस मरा आपन चरित आप ही करा आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट आज्ञाकारी सारी सब सृष्ट आपे आप कर्मे आप अनक जुग जुत रक्षा प्रसाद अविनाशी नाही किस खंड धारण धारक ब्रह्मांड अलख भेद पुरुष प्रताप आवज पाए नानक जात जिन प्रव जाता तो शोभावंत सर्व संसार ग्रह चिन्मंत प्रव के सेवक सर्व उदाहरण प्रव के सेवक दुख विचारण आपे मेल लय कृपाल गुरु का तब जग सहनिहाल उनकी सेवा कोई लाग है जिसनों कृपा कर अगर भाग है नाम जगत पावे विश्राम नानक तिन पुरख कहो तम करमान जो कुछ करे तो कल तेरंग सदा सदा दसे हर संग सर छुपाए हुए सो होए करने हार पिछाने सोए प्रका किया जन्मित लगाना जैसा चाहता है सब दिखाना जिसे जिसे छुमाए छुमाए सो सो संधान ही बने आए हर सो आदि मेहमान नानक प्रजने को जान सुख मणि सुखमृ सो नाम भक्ति ना कह मन सराम सलो सर्व कला प्रभुर प्रभ विरसा जानन हार ज्यों कै सिमरन उदरिया नानक बलियार सत नाम श्री वाहिगुरु टूटी गांधन हार गोपाल सर्व जिया आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिसते बिरसा कोई नाहे हे मन मेरे सदा हर जात अविनाशी प्रवया पे आप आपन किया कुछ न होए जे तो प्राणी लोके कोए जिसमें ना ही करे कुछ काम दत नानक जाके हर नाम रूपवंत है ना ही मोह है प्रभु की जो दल पर सो है धनवंत है क्या तू गर्व है ज्ञा सब कुछ किसका दिया दर्व है आज पूरा जे को कहावे प्रभु की कला बिना कहतावे जे को होए बह दातार किस देन हार जाने गवार जिस गुर प्रसाद टूटे हमरोग नानक सोजन पूरा अरोग जो मंदिर को थमे थमन त्यो गुर का शब्द मन है थमन जो पाकान नव चर करा प्राणी गुर चरण लगत ने करा जो अंधकार दुख प्रयास गुर दर्शन देख मन हो दवास जो मन ज्ञान में मार्ग पावे ते साधु संग जो सरकावे तेन संतन की बाचे धूर नानक की कर लो चाकूर मन मूल सुखाए दिल लाइए पूर्व लिखे काले कह पाइए दुख सुख प्रभु नहार अगर प्यार तू एक सार जो कुछ करे तो इस कुमान उला पाए क्रिया ज्ञान कौन बस आई तेरा संग लगत रहे उस रख लोभी पतंग राम नाम जत हृदय माहे नानक पासे पी कर जाहे जिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया तज गुमान ले ओ मनमोल राम नाम हृदय में तो लाभ की संते संचाल और त्याग क्या जंजाल तन तन करे सब कोई मुकुजल हर दर सब कोई ये व्यापार मिला व्यापार है नानक सांसार सब बलिहार है चरण सार के पैसे पियो हर प्रसाद को अपना जियो सार की सूर पर हो स्नान सार ऊपर जाइए कुर्बान सार सेवर भागी पाई है सार संग हर की संगाई है अंत विघन पे साधु राख है हर गुण गए अमृत रस्या है ओट गई संत है दरियाया नानक सुख नान से पाया सर्व सुख नान से पाया नरसत को जीवालन हार सुखे को देव त्यागार सर्वल दान जाके दस्ती माहे पूर्व लिखे का लहना पाहे सबके सब करने जो इस बंधु सर भगवान हो जप जन सदा सदा बनैणी सबसे उच निर्मल है करणी कर कृपा जिसको नाम दिया नान को जन निर्मल किया जानता है मन गुर की प्रतीत त्रिजन आवे हर प्रतीत भक्त भक्तनी अति हो लोए जानता है हृदय को सोए सच करनी सचता की रहत सच हृदय सतमुख कहत साची दृष्ट साचा आकार सच अर्थ साचा प्रसार सार ब्रह्म जन सच कर जाता नान को जन सच समाता सुखमणि सुखमृत प्रभु नाम भक्त बिना कह मन विश्राम सलो रूप मारे खन राम किस प्रभु गुण से प्रभु किन्न किसे बिजाए नान का किस होवे सो प्रसन्न सत नाम श्री वाहिगुरु अष्ट तवे अविनाशी प्रमन माहे आप मानो की तू प्री प्याल किसका प्रय नहीं किसे हो कोए सर्व निरंतर एक हो सोए आपे दीना आपे गाना गहर जमीर से गहर से जाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा दान दयाल गोसांद सत ਸਾਧ ਕਰੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪਾਓ, ਨਾਨਕ ਕਾਇਮਨ ਇਹੋ ਨਰਾਓ, ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਜੋਗ, ਜੋ ਕਿਰਪਾਇਆ ਕੋਈ ਹੋ, ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾਂ ਕਾਨੀ ਤਰਫੋ, ਤਿਸਰਾ ਮਨ ਤਰਨ ਜਾਣੇ ਹੋ, ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਸੁਰਜਾਂ ਕਹਿ, ਸਰਵ ਸਭ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਰਤਾ ਕਹਿ, ਰਾਜ ਮਹਿ ਰਾਜ ਯੋਗ ਮਹਿ ਜੋਗੀ, ਤਪ ਮਹਿ ਤਪੀਸਰ, ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਮਹਿ ਭੋਗੀ, ਚਾਹੇ ਚਾਹੇ ਭਗਤ ਹੈ ਤੂੰ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਚਿਤ ਪੁਰਖ ਕਾ ਕਿਨੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀ ਨਿਤ ਨਾਹੀ, ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਅਵਗਾਹੇ, ਪਿਤਾ ਭਜਨ ਮੁਕੇ ਜਾਣੇ ਪੂਤ, ਸਗਲ ਪੁਰੋਹੀ ਆਪਣੇ ਸੂਤ, ਸਮਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ, ਗੰਦਾਸ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਗੁਣ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕੋ ਪਰਮਾਏ, ਜਨਮ ਰਹਿ ਕਰਿਆਵੇ ਜਾਏ, ਊਚ ਨੀਚ ਤੇ ਅਸਥਾਨ, ਜੇ ਸਜਣਾ ਵੇ ਚਾਹ ਨਾਨਕ ਗਿਆਨ, ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਨਾ ਜਾਂ ਕੇ ਰੰਗ, ਨਾਨਾ ਤੇ ਕਰੇ ਕਰੰਗ, ਨਾਨਾ ਦੇਵ ਕੀ ਨਮਸਕਾਰ, ਪ੍ਰਭਨਾ ਕੀ ਸੰਕਾਰ, ਨਾਨਾ ਚਿਤ ਕਰੇ ਸਨਮਾਹੀ, ਪੂਰੇ ਪੂਰਨ ਸੁਲਕਾਏ, ਨਾਨਾ ਵੀ ਸਰਬਤ ਬਣਾਈ, ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਿਆ ਤੇ ਪਾਈ, ਸਭ ਕਰ ਸਕੇ ਸਭ ਸਕੇ ਸਾਓ, ਜਬ ਜਬ ਜੀ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਕਗਲੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਕਣ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਦੇਵ ਪੁਰਾਣ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਣਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਗਾਸ ਪਾਤਾਲ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਵਲੇ ਆਕਾਰ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀਆਂ ਸਭ ਪਵਣ, ਨਾਮ ਕੇ ਸਮੁਦੇ ਸੰਸਰਵਨ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੈਂ ਸੋ ਜੰਗਤ ਪਾਏ, ਰੂਪ ਸਤ ਜਾਂ ਸਤ ਕਿਰਤਾਨ, ਪੁਰਖ ਸਤ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਤੂਤ ਸਤ ਸਤਿਆਂ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਸਤ ਪੁਰਖ ਸਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਣੀ, ਸਤ ਕਰਮ ਜਾਂ ਤੀਰਥ ਨਾ ਸਤ, ਮੂਲ ਸਤ ਸਤ ਉਤਪਤ, ਸਤ ਕਰਮੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲੀ, ਸਭ ਬੁਝਾਏ ਸਭ ਭਰੀ, ਸਤ ਨਾਮ ਸਭ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਵਿਸਵਾਸ ਸਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕੀ ਪਾਈ, ਸਤ ਬਚਨ ਸਭ ਉਪਦੇਸ਼, ਸਤ ਤੇ ਜੰਜਾਂ ਕਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਸਤ ਨਿਤ ਬੁਝਿਆ ਜਗ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਜਗਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ, ਆਪ ਸਤ ਕੀ ਆਤੋ ਸਤ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੀ ਨਿਤ ਗਤ, ਜਿਸ ਕੀ ਸਿਰਫ ਸੁਖ ਸੁਖ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਅਵਰ ਨਬੂਹੀ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਤੇ ਕੀ ਨਿਤ ਨ ਜਾਣੇ ਕੀ ਆ, ਨਾਨਕ ਜੋ ਭਾਵੇ ਸੋ ਵਰਤੀਆ, ਵਿਸਮਨ ਵਿਸਮ ਪੈ ਵਿਸਮਾਰ, ਜਿਨ ਬੁਝਿਆ ਤਿਆ ਸਵਾਰ, ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਰੰਗ ਰਾਜ ਜਨ ਰਹੇ, ਗੁਰ ਕਹਿ ਬਚਨ ਪਦਾਰਥ ਲਹੇ, ਕੋਈ ਦਾਤੇ ਜੋ ਕਾਟਨ ਹਾਰ, ਜਨ ਕਹਿ ਸੰਗ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਜਨ ਕਾ ਤੇਗ ਤੋੜ ਭਾਗੀ, ਜਨ ਕਹਿ ਸੰਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਗੀ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀਰਤਨ ਜਨ ਗਾਵੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੈ, ਸੁਖਮਣੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਭਗਤੀ ਨਾ ਤੇ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਸਲੋ, ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਢੇ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਢੇ ਸੱਚ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸਤਪਦੀ, ਚਰਨ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਸਨਹਾਰ, ਪੂਜਾ ਸਤ ਸਤ ਤੇਵਦਾਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਤ ਸਤ ਤੇਖਣਹਾਰ, ਨਾਮ ਸਤ ਸਤ ਧਿਆਵਨ ਹਾਰ, ਆਪ ਸਤ ਸਤ ਸਭ ਧਾਰੀ, ਆਪੇ ਗੁਣਿਆ ਤੇ ਗੁਣਕਾਰੀ, ਸਭ ਦਾ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਭਗਤਾ, ਸੁਰਤ ਸਤ ਸਤ ਜਸ ਸੁਨਤਾ, ਬੁੱਧਨ ਹਾਰ ਕੋ ਸਤ ਸਭ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਸਤ ਸਰੂਪ ਰਜੇ ਜਿਨ ਮਾਨਿਆ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤਿਨ ਮੂਲ ਪਛਾਣਿਆ, ਜਾਂ ਪੈਰ ਜਗ ਸਵਾ ਪ੍ਰਵਿਆਇਆ, ਸਤ ਜਾਂ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸਾਨਾ, ਜਿਸੇ ਪ੍ਰਿਆਤ ਮਾਏ ਸਮਾਨਾ, ਬਸ ਮਾਹੀ ਨੇ ਬਸ ਗਦਾਈ, ਤਾਂ ਕੋ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਈ, ਬੁੱਝੈ ਬੂਝਣ ਹਰ ਵਿਵੇਕ, ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕੇਕ, ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੈ ਮਨ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਗੀਤ, ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਸੇਵਕ ਜਾਣੇ ਸੰਗ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੇਵਕ ਨਾਮ ਕੇ ਰੰਗ, ਸੇਵਕੋ ਪ੍ਰਪਾਲ ਨਹਾਰਾ, ਸੇਵਕੀ ਰਾਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰਾ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਲਿਖਦਿਆ ਪ੍ਰਵਧਾਰ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸਾਹ ਸਾਹ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾ ਢਾਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕੀ ਸਰ ਪ੍ਰਦਾਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਦੀ ਵਡਾਈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਾਮ ਦੀ ਪਾਈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਕੀ ਜਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਲਾਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਵੈਦ ਸੁਖਾਇਆ, ਨੀਤੀ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਲਰਾਕ ਹੈ, ਭਸਮ ਕਰੈ ਲਸਕਰ ਕੋ ਜਲਾਕ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਾਧਨ ਕਰਦੇ ਆਪ ਤਾਂ ਕੋ ਰਾਸ ਦੇ ਕਰ ਹਾਥ, ਮਾਨਸ ਯਤਨ ਕਰਤ ਬੋ ਭਾਤ, ਪਿੱਛੇ ਕਰਤਵ ਮਿੱਥੇ ਜਾਤ, ਮਾਰੇ ਨਾ ਰਾਖੇ ਅਰਨ ਕੋਏ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਸਾਰਾ ਸਤ ਹੋਏ, ਬਾਹੇ ਤੁਰ ਕਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਯਤਨਾਂ ਸਭ ਲੱਖ ਬਣਾਈ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਰ ਤੋਂ ਜਪੀਏ, ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਮਨ ਸੰਤ ਰਪੀਏ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਉਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇਆ, ਨਾਮ ਤਨ ਨਾਮ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਨਾਮ ਸੁਖ ਨਾਮ ਕਸੰਗ, ਨਾਮ ਰਸ ਜੋਜਨ ਸੰਸਾਨੇ, ਮੰਤਰ ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਸੁਮਾਨੇ, ਪੂਰਤ ਬੈਠ ਸੋਤ ਨਾਮ, ਕਉ ਨਾਮ ਜਨ ਕੇ ਸੁਖਾਮ, ਬੋਲੋ ਜਸ ਜੇ ਬਾਦ ਨਰਾਤ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਜਨਤੀ ਨੀ ਦਾਤ, ਕਰੇ ਭਗਤ ਆਤਮ ਕੈ ਚਾਹੇ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਹੈ ਸਮਾਏ, ਜੋ ਹੋਆ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ,
2: اس کی میں نہ کون دکھانو کیا گندے کلیانو آٹھ پہر سب سہ جورے نان سو نان سے ہن پورے من لے سن کی اوت لے گئے منت نے اپنا سنجن دے گئے جن جان اپنا پرو پچھاتا تو ان سرو تو کا داتا اس کی کرن سرو تو پاو ہے کہ در سل سل پاپ مٹاو ہے اور سے اندر سلی شاڑ تین کی پتے والا آگ آون جان نہ ہوگی تیرا نان کے جن کا پوجا کو سب تیرا سخمنی سخمرت پرو نام سبتی نا دین انسران سلو سات پرت من جانیا سدگر کا نام ਸਿਸ ਕਾਇ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਦਰੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸਤਪਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸੇਵਕ ਕਉ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਹੀਰਾ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਮਰਨਾ ਮੁਚਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਖੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਘਾਟੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਖੋ ਨਾ ਸੰਦੇਹ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਰਤਾ ਜੀਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸੁਰ ਕਾ ਹਰ ਸਫਲ ਸਵਾਰ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਖੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸੁਮਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹਿ ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹਿ ਆਪ ਸੋ ਕਰ ਕਿਸਨ ਜਿਨਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਸਭ ਧਿਆਵੈ ਮਨ ਦੇ ਚਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ ਕਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰ ਜਰਾਸ ਸੇਵਾ ਕਰ ਤੋ ਹੋਈ ਨੀ ਕਾਮੀ ਇਸੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਤੇ ਆਪ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਰੇ ਗੀਤ ਜਿਤਵੇ ਗੋਤਾ ਮਨ ਮਨ ਹੈ ਸੋ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਗਤ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਤ ਸਿਵੇ ਹਰ ਨਾਉ ਅੰਤ ਬਾਰ ਜੋ ਤੋ ਬਜਾਓ ਸਰਵਧਾਨ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ ਆਠ ਹੈ ਪਾਰ ਨੋ ਰੰਗਰਾਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਮਨ ਜਨ ਜਨ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਏਕਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਪਲਿਆ ਨਾ ਜਾਈਐ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਅਨਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਡੀਤ ਪਰਸਨ ਚਰਨ ਗਤ ਨਿਰਮਲੀ ਤੇ ਤਤ ਸੰਗਰਾਮ ਗੁਣ ਰਵੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦਰਵੇ ਜਵੇ ਸੁਣ ਕਰ ਬਚਨ ਕਰਨ ਆਵਾਨੇ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਆਤਮ ਪਤੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਗੋਰਿਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਾ ਮੰਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇ ਸਹਿ ਵਸੰਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸੁਣ ਤਨੀ ਪਾਏ ਨਾਨ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਲੈ ਮਿਲਾਏ ਦੇਵਾ ਇਹ ਤੋ ਸੁਤਨੇ ਸਤਪੁਰ ਪੂਰਨ ਲਭੇ ਕਾਹੂ ਗੋਣ ਪੰਚ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅਗਮ ਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਵਾਣੀ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਮੇਰਾ ਅਰਥ ਉਦਾਈ ਸੰਤ ਕਿਵੇਂ ਨ ਪਾਈ ਅਣਕ ਭਗਤ ਬੰਧਨ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਚਰਨ ਕੋਣ ਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕ ਜਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਪਨੇ ਇਹੋ ਹਰ ਪਾਜਨ ਹੋਏ ਅਮਿਤ ਵੀ ਅਮਿਤ ਹੋਏ ਉਸ ਦੁੱਖ ਕਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਜਾਂ ਤੇ ਮਨ ਪਰ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਆਠ ਪਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੇ ਸਤਿਵ ਦੇ ਸੁਰ ਸੇਵ ਸੁਰ ਕਹੋ ਗੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੇ ਸੰਗ ਨ ਦੇਖ ਮਨ ਮੇਰਾ ਤੇ ਅਰ ਵੇਖ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਾ ਤੇ ਨੰਦ ਧਰਮ ਮੋਹ ਦੁੱਖ ਪਹਿ ਤੇ ਨਾ ਸੇ ਤਤ ਮਨੇ ਕਾਨਵਰ ਤਾਈ ਅਨੰਦ ਧਿਆ ਦੁਖਨਾ ਕੇ ਭਾਈ ਜਨਮ ਮਨ ਚਿੰਤਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਿਰਗੁਣ ਤੀਓਹੀ ਕਲਾਕਾਰ ਜਨ ਸਭੀ ਮੋਹੀ ਆਪਣੇ ਚਿਰਤਿਆ ਬਨਾਏ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤਿਆਂ ਤੇ ਪਾਏ ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਸਰਬਨ ਰੰਤਰੀ ਕੋ ਤੋਏ ਉਹ ਸੂਤਰ ਵਿਆਰ ਉਪਰੰਗ ਕੈ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕੈ ਸੰਗ ਰਚ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਗਲ ਧਾਰੀ ਅੰਤ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸੁਖਮਣੀ ਸੁਖਮਰ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਿਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਸਲੋਕ ਸਾਥ ਨ ਚਾਲੇ ਦਿਨ ਭਜਨ ਇਤਿਆ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵਨ ਨਾਨਕੇ ਹੋ ਸੰਸਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸਤਪਰੀ ਸੰਤ ਜਿਨਾ ਮੈਂ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਏਕ ਸਿਮਰਨ ਆਧਾਰ ਅਵਰੋ ਪਾਵ ਸਮੀਤ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਜਮਾਇ ਉਤਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਤੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸਮਰੱਥ ਗ੍ਰਹਿ ਕਰ ਗਹੋ ਨਾਮ ਹਰ ਵਤ ਇਹੋ ਸੰਤ ਸੰਚੋ ਹੋ ਤੋ ਅੰਤ ਸੰਤ ਜਿਨਾ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ ਏਕ ਆਸ ਰੱਖੋ ਮਨ ਮਾਹੀ ਸਰਵ ਰੋ ਨਾਨਕ ਮਿਟ ਜਾਹੇ ਜਿਸ ਤਨ ਕਹੋ ਚਾਰ ਕੋਣ ਟੁੱਟ ਧਾਵ ਹੈ ਸੋ ਤਨ ਹਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਪਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਸੁਖ ਕੋਣਿਤ ਬਾਕੇ ਨੀਤ ਸੋ ਸੁਖ ਸਾਧੂ ਸੰਪਹੀਤ ਜਿਸ ਸੋਭਾ ਕੋ ਕਹੇ ਪਰੀ ਕਰਨੀ ਸਾ ਸੋਭਾ ਪਰੀ ਹਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਅਨਕੋ ਪਾਗੀ ਰੋਗ ਨ ਜਾਏ ਰੋਗ ਤੇ ਹਰਿ ਉਪਦ ਲਾਏ ਸਰਵਨ ਦਾਨ ਮੈਂ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਜਪ ਨਾਨਕ ਦਰਗੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਨ ਪਰ ਗੋਦ ਹੋ ਹਰ ਕੈ ਨਾਏ ਗੈਰ ਉਸ ਧਾਵ ਤੇ ਆਵੇ ਖਾਏ ਤਾਂ ਕੋ ਦਿਲ ਨ ਲਾਗੇ ਕੋਏ
0: ہر کوئے کل تاسی کھانڈا ہر نہ سیور سیور سدا تو پاؤ تو بنتے پورن ویا بھگت پایا تم پرگاس ست گھر جائے بتائے اگناسی کو نانک کاٹھی جمپاسی

हे प्रभु, मैं होर आसरिया वालों हार के तेरे दर ते आ पिया हां। हुण मैनू कोई होर आसरा सुझदा नहीं। हे प्रभु, असा जीवां दे कर्मां दा लेखा ना कर। असी सदा ही सुरखरू हो सकते हां जे साडे कर्मां दा लेखा ना ही कीता जाए। हे प्रभु, सानू गुणहीन जीवां नूं विकारां तों आप

प्यारे श्रोतियों, पिछले हफ्ते जो कुछ सिखी विरसे दे वारसा ने श्री अकाल तख्त साहिब दी शताब्दी मनाउन समय वरताया ओ निंदन जोग ही नहीं सगो साडे लई शर्मिंदगी वाली घटना सी। एक पासे सिख सिख दी दस्तार नू हाथ पाउंदा है ते दूसरे पासे असी पंथ दी चढ़दी कला दी गल करदे हां। खिमा करना, एहो जिहे दृश सिख पनीरी नू कोहां दूर लै जाणगे। साडा सभना दा फर्ज बनदा है कि असी अपने विचार लिखती रूप विच अकाल तख्त नू भेजिए। खैर, साडा अज दा विशा है सिखी विरसे दीआं उहनां रूहां वल जिन्हां नू आपां हर रोज अपनी अरदास विच श्रद्धांजलि भेंट करदे हां। रोजाना अरदास दा हिस्सा हन इह शब्द जिन्हां गुरसिखां बंद बंद कटवाया, रंबियां नाल खोपरियां लोहाईयां, तिन्हां सभनां दी कमाई दा ध्यान धर बोलो जी वाहिगुरू। अरदास समय कदी विचारिया है कि एह गुरसिख कौन सन, इन्हां बंद बंद क्यों कटवाया जां फिर रंबी नाल खोपरियां क्यों उतरवाईयां।

आओ फिर अज दे प्रोग्राम राही गुरु दे चरणा च लीन होईयां आत्मावां दी दुनियावी जीवन यात्रा तो कुछ सेध लईए। असी प्रोग्राम नूं दो हिस्सों विच पेश करांगे। पहले हिस्से विच शहीद भाई मनी सिंह जी दी जीवन यात्रा अते बंद बंद कटवा शहीदी प्राप्त करन बारे अते दूसरे हिस्से विच भाई तारू सिंह जी दा दुनियावी सफर अते खोपड़ी लहाउण दी हकीकत। निरसंदेह भाई मनी सिंह साहिब जी इतिहास की एक महान पूजनिक हस्ती हैं। आप जी का जन्म स्थान अते जन्म तरीक बारे वख-वख लेखकां ने वख-वख लिखिया है। अज साडे इस भुलेखे नूं दूर करन दे नाल नाल सही पूजनिक आत्मा नूं निग्गी अते मिठी श्रद्धांजलि भेंट करन दी निमाणी जिही कोशिश होवेगी। सिखी विरसे दे वारसों इन्हां शंकियां दा मुख कारण सिख इतिहास विच एक तो ज्यादा मनी सिंह दा जिक्र आउणा हो सकदा है। सिख इतिहास चार मनी सिंघां दा जिक्र करदा है। असीं चारां ने आपो अपने समय सिखी दी अणथक सेवा कीती। असीं इन्हां चारे सिंघां दे नामां नूं उन्हां दे गोतां जां पिंडां दे नामां नाल पहचान करा के नखेड़न दी कोशिश करांगे। इन्हां दे नाम इतिहास विच इस तरह दर्ज हन। भाई मनी सिंह कंबो, भाई मनी सिंह दलक, भाई मनी सिंह काना कसर अते भाई मनी सिंह अलीपुर। सुभाविक ही भाई साहिब जी दी जीवनी बारे वखरे वखरे खोजियां जां लिखारियां दीआं लिखतां नूं पड़चोलदे समें मन शंका विच पै जांदा है। किसे ने आप दा पिता भाई काला जन्म स्थान पिंड करड़ जिला अंबाला दस्या है, जो इलाका उजड़ जान कारण मगरों कुबोवाल पिंड सुनाम आवसे अते किसे ने दुलाक परिवार नाल संबंधित जां फिर किसे ने काना कच्छा पिंड नाल जोड़िया है। इस विषय नूं नखेड़न लई असीं वक्खरियां वक्खरियां खोजां दे स्रोत दर्शाउंदे हां। भाई मनी सिंह कंबो दी गाथा केसर सिंह शिब्बर दीआं लिखतां विच्चों मिलदी है, पर इतिहासिक तथ फरोलदिआं पता लगदा है कि भाई मनी सिंह कंबो ने कदी भी हरिमंदर साहिब सेवा नहीं सी कीती। भाई मनी सिंह दुलक दी जीवन गाथा ज्ञानी ज्ञान सिंह दी लिखत विच्चों मिलदी है। आप एक दलित जट घराणे नाल संबंधित सन अते आप जी ने 1795 ईस्वी विच शहीदी पाई, जदके बंद बंद कटवाउण दी वार्ता 1791 ईस्वी दी है। भाई मनी सिंह काना कस्सा बारे जिक्र कीता है भाई वीर सिंह बल सठियाला ने अपनी लिखत सिंह सागर जो 1884 विच छपी सी। क्योंकि भाई मनी सिंह अलीपुर दा पोतरा काना कस्सा आ वसिया सी, इंज लगदा है कि इस तों अंदाजा लगाया होवे कि शायद ही भाई मनी सिंह इस पिंड दे जंपल सन।

श्रोताजन तुहाडे नाल सांझे कीते तथां तो जाहिर है कि शहीद भाई मनी सिंह जी जिस दी याद विच आपां जुड़े हां दा जन्म पिंड अलीपुर जिला मुजफ्फरगढ़ विखे होया। आप जी दे पिता भाई माई दास खेतीबाड़ी दा किता करदे सन। आप जी दी माता दा नां पहला मदरी बाई अते अमृत दी दात प्राप्त करन बाद दया कौर सी। आप जी दे दादा भाई बल्लू बड़े वीर बहादुर सन जो छेवे पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे समय 15 अप्रैल 1634 नूं अमृतसर विखे शहीदी पा गए सन।

जब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब शहीदी प्राप्त करने लई दिल्ली नूं रवाना होए तां भाई मनी सिंह जी दी सेवा गुरु गोविंद सिंह साहिब पास ठहरन दी लगी सी। दसम पातशाह दी हजूरी विच रह के आप जी ने होर भी गुरु विद्या प्राप्त कीती अते पढ़न पढ़ाउण अते लिखन दी सेवा करदे रहे। श्रोता जन सोजी प्रीतम दी साहित दी शोर ने भाई मनी सिंह जी ने एक महान विद्वान बनाया। जदों श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी राजा मेदनी प्रकाश के सदे से नाहन पधारे तां भाई मनी सिंह भी उन्हां दे नाल सन। 1688 ईस्वी विच पंगाणी दा युद्ध होया जिस विच भाई साहिब जी ने बाकी गुरसिखां नाल रल के सूरम गति दे जौहर विखाए। इसे जंग विच आप दे भरा हरी चंद जी शहीदी पा गए सन।

सन 1735 तो भाई मनी सिंह जी कौम की समुची अगवाई कर रहे सन। झगड़े मकान ते कई अणमुलियां सलाहां ओ दिंदे रहे सन। दिवाली अते वैसाखी ते सिंघां दा इकट्ठ करके सिंघां नूं जुड़ बैठण दा मौका बख्शदे सन। दिवाली ते वैसाखी दे इना इकट्ठां ने सिखां विच बहुत उत्साह ते जज्बा भरिया सी। सन 1738 दी दिवाली नूं भाई साहिब जी ने इकट्ठ करन दी सोची। जकरिया खान ने इस शर्त उत्ते इजाजत दिती कि 5000 रुपए कर वजो तारे जाणगे। भाई साहिब जी ने इस शर्त नूं प्रवान कीता क्योंकि ओ जाणदे सन कि सिख बहुत श्रद्धालु हन अते हर हीले ओ इतनी रकम इकट्ठी करन विच कामयाब हो जाणगे। दूसरे पासे जकरिया खां भी अपनी ताक विच सी। सिखां दे इकट्ठ नूं ओ जाल विच आया एक शिकार समझदा सी। उस दी व्योंत ए सी कि जुड़े खालसे नूं दिवाली वाली रात घेर के तोपां नाल उडा दित्ता जावे।

तो जतर ने जवाब ना विच मिलन ते जुर्माना ना तारन दी सूरत विच बंद बंद कटन दा हुक्म दिता। भाई साहब जी ने शहादत कबूल करदे हुए कहा कि ओ एक जीवन ता सी, कई जीवन सिखी तो वारन ले तैयार हन। वाह गुरु दिया सिखा, तन है तेरी सिखी।

इतिहास गवाह है कि सिख कौम जिथे अंतां दी दयालू कौम है उथे हैंकड़वाद जालम नूं बख्शदी भी नहीं। जिन्नियां भी शहीदियां होईयां उन्हां दा बदला लै बगैर खालसा तलिया नहीं। इसलिए जरूरी सी जिन्हां हत्यारियां दा भाई मनी सिंह जी दी शहीदी विच हथ सी उन्हां दे कीते दा फल भुगताया जावे। इसलिए सब तो पहला सरदार अग्गर सिंह ने जो भाई मनी सिंह जी दे भतीजे सन दिन दिहाड़े कातलां दा खुरा खोज मिटाया। पर अजे भी दो बड़े हत्यारे समद खान अते जकरिया खान बाकी सन। ए अब्दुल समद खान प्रसिद्ध समद खान यूसुफ जी करके मशहूर सी जिसने भाई मनी सिंह जी नूं काफी कष्ट दिते सन। सिख पंथ दे महान जथेदार नवाब कपूर सिंह दे एक जथे नाल समद खान दी मुठभेड़ दौरान समद खान पकड़िया गया सी। उस नूं रस्सियां नाल जकड़ के घोड़ियां दे मगर बन्ह दित्ता गया अते घोड़ियां नूं दौड़ा दौड़ा के इसका अंत लिआंदा।

इस तरह इस अपराधी नूं सजा दित्ती गई। समद खान दी मौत नूं देख के दूसरे अपराधी जकरिया खान नूं समझ पै चुकी सी कि खालसे ने एक दिन उसका भी बुरा हाल करना है। इस डर नाल उसने किले तो बाहर निकलना बंद कर दिता सी। अंत इस पापी दीदी 1745 ईस्वी विच भाई तारू सिंह जी दी जुत्ती सिर ते मरवा के मौत हो गई। श्रोता जन, तुसी कैलगू दे हल्के विच ए प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैस्टर्न सिंसवा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। अज असी श्रद्धांजलि भेंट कर रहे हां उस महान शहीद नूं जिसने बन बन कटवा सिख कौम दा कर्जा उतारिया। भाई साहिब जी दी ए अदुती कालना सिख पंथ ले हमेशा चानन मुनारे दा कम दिंदी रहेगी। भाई मनी सिंह जी शहीद दा समुचा जीवन एक अदुती ते अमोलक विरसा है। साडे मौजूदा जथेदार अते पंथ कलीडरां नूं भाई साहिब दी अदुती देण तों सेध लेनी चाहीदी है। श्रोता जन, बिरले ही परिवार सिख इतिहास विच होए हन जिन्हां दे परिवार ने इतनियां शहीदियां पाईयां हुण। भाई मनी सिंह जी दे परिवार ने 29 शहादतां दित्तियां। भाई मनी सिंह जी दे 10 लड़के सन जिन्हां विचों 7 ने शहीदियां प्राप्त कीतियां। करो धन्नवाद उन्हां गुरसिखां दा जिन्हां सदका अज आपां अपनी आजादी मान रहे हां। सिक्खी विरसे दे वारसो असी आप जी नूं दस चुके हां कि भाई मनी सिंह जी दे बंद बंद कटवाउण दा मुख दोषी जकरिया खान सी अते इस दी मौत भाई तारू सिंह दी जुत्ती सिर विच मरवा के होई सी। आओ प्रोग्राम दे अगले हिस्से विच तुहानूं लै चलिए इस रूह दे चरण परसन लई जिस दी जुत्ती ने जकरिया खान नूं नरकां दी जिंदगी भोगण तों छुटकारा दवाया। नाल नाल एक शब्द सरवण करो जी।

इतनी सरल भाषा अति सादगी नाल भाई साहिब एक निंदक दी उदाहरण राही तुलना करते हैं। आप विचार पेश करते हैं।

जिस तरह हाथी नूं जितना मर्जी पानी नाल नलाया जाए पर फिर भी उस सुंड नाल मिट्टी उछाल के लिबड़ जांदा है।

0: प्यारे श्रोता जन सुनो, इस निंदक निरंजनीय ने अन्ने आगू यकरगे नू की आख्या भाई तारू सिंह जी बारे।
1: आखदा है खान साहिब, पोले पिंड विच वसदा एक तारू सिंह नामी सिख, अपने घर डाकुआं नू शरण दिंदा है, जिस करके पिंड दे लोकां नू उस तों खतरा है। पिंड दे लोकां दी इज्जत भी डाकुआं दे आउण नाल सुरक्षित नहीं रही। एक तारू सिंह हकूमत दे बागी सिंघां वलों मुखवरी भी करदा है ते बागियां नू हर तरह दी मदद भी करदा है।

आखिर एक दिन भाई साहब जी ने जकरिया खान सामने पेश किया गया। भाई तारू सिंह ने अपनी गिरफ्तारी का कारण पूछा ते कहा, हे नवाब, दस मैं तेरा की बिगाड़िया है जिस कारण तू मेनू ऐसे तसीहे दे रहा है। मैं ता अपनी दसा नोहा दी किरत कमाई करदा हां, खेती बाड़ी करदा हां ते सरकार दा मालिया भाव टैक्स भी दिंदा हां। अन्न दाना उगा के अपने पेट नू भुखा रख के भी लोड़वंदा दा पेट भरदा हां। मैनू दस कि मेरी इस लोड़वंदा प्रति हमदर्दी तो हकूमत क्यों दुखी हुंदी है।

प्यारे सोतियो, भाई तारू सिंह जी की शहादत सिखा ने एक जानन मुनारा है। हर एक सिख भाई साहब जी की शहादत से मान कर सकता है। भाई तारू सिंह जी की शहीदी से सिख जगत ने धार्मिक सदाचार व्यवहारक सेध लैन की लोड़ है। क्यों ना आप जी का ध्यान इन्होंने दृष्टिकोणों वाल लै चलिए।

0: केवोदी रंगीली धरती दे वसनीक श्रोतियो, तुसीं इह प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तों सुन रहे हो। यह प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम स्लिप तों प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नूं होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसीं सानूं सुझाव दिंदे रहोगे।
1: साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तां ओह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे, निमख निमख तुम ही प्रतपालो हम बारक तुमरे तारे। हाजरा हजूर जाहरा जहूर चावर छत्र तख्त दे मालिक दसा पातशाहियां दे आत्मक स्वरूप, धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर, संध्या वक्त दे सजे हुए दीवाना अंदर आप सरबत माई भाई सिख संगत बड़े अदब प्यार ते सत्कार सहित चौंकड़े ला के देवत्या समान जुड़ बैठे हो। इलाही बाणी दे कीर्तन सतगुरां दी पवित्र गुरबाणी सोधर जी दे जाप, चल रही लड़ीवार कथा मीरी पीरी दे मालिक गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी दीआं बख्शिशां, आप सरबत संगत बड़े अदब प्यार ते सत्कार सहित सरवण कर रहे सी। कुछ समा गुरु चरणा विच दासरियां दे ढाडी जत्थे नूं आप सिख संगतां दे रूबरू होण दा समा प्राप्त होया, कुछ कहण दी आसीस बख्शदे होए सब तों पहलां सतगुरां दी बख्शी होई गुरु फतेह दे सिमरन दे नाल हाजरी लवाओ। सारी संगत बुलंद आवाज विच गज के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। लगातार ढाडी जत्थे वालों साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी दे जीवन संबंधी आनंदपुर साहब जी की पावन पवित्र धरती से जो मेरे सतगुरां ने चोध ने वह आप संगत की सेवा के अंदर बयान किए जा रहे सन, जिथे कल के दीवान अंदर खालसे की साजना का इतिहास आप संगत की सेवा के अंदर बिना कर सके हाँ। विचार अनुसार अज आनंदपुर साहब जी की पावन पवित्र धरती तो अगेरे को चलन का यत्न करिए, अगेरे जो कुछ वापरिया मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी इन्हां मुगलिया हकूमत के हुक्मरान जेड़े जालम सुभा दे ने गुरु घर दे नाल विरोधता ते ईरखा रखण वाले ने उन्हां दा टाकरा मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह ने जिस हौसले दे नाल कीता है और सतगुरां दे संग गुरु दी चरण शरण विच रहण वाले गुरसिख जिस हौसले दे नाल दुश्मन दलां दे दंद खट्टे करदे रहे ने वह इतिहास आप संगत की सेवा दे अंदर कहण दा यतन कर रहे हैं। आनंदपुर साहब जी का आखिरी युद्ध 1704 ईस्वी के अंदर इतिहास विचारवाना की राय अनुसार मई के महीने के अंदर आनंदपुर साहब नूं आण के फौजा ने घेरा पा लिया। दरअसल औरंगजेब बादशाह दक्षण इलाके दे विचों होई बगावत नूं दबाउंदा दबाउंदा अक गया। हर साल लखां की गिणती के अंदर फौजा मारियां जांदियां खत्म हो जांदियां बेहद नुकसान हुंदा रहा। अज जे दिल्ली पहुंचा है इस नूं ये रिपोर्टां मिलियां ने ये खबरां मिलियां ने कि पंजाब की धरती अंदर दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह आनंदपुर साहब की धरती से अपनियां फौजां तैयार पर तैयार चढ़दी कला विच विचर रहे ने। इस गल दियां खबरां गुरु घर दे दोखियां ने वधा चढ़ा के दित्तियां। पातशाह जिवें दक्षण दे इलाके दे अंदर बगावत होई है आउण वाला समां ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਹਾ ਲਾਖਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਹਿੰਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਲਖਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਧਰ ਚਾਰ ਫੇਰੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ 22 ਤਾਰ ਪਹਾੜੀਏ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਖੇਮਾ ਮੰਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਕਹਾਏ ਮਿੰਟ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੌਜ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਵਾਏ ਨੇ ਢਾ ਕੇ ਨੇਸੋ ਨਾਬੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਹੀ ਮਨ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੀ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਮੁਗਲੀਆ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਈਨ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਭਰ ਕੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਦਬਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ताकि कोई भी साडे सामने सिर उच्चा चुक के अपनी आवाज ना बुलंद कर सके। लो जी एक घेरा पै गया, मेरे गुरुदेव सतगुरु सच्चे पातशाह ने इन्हों की पहले ही कारशता नहीं समझदिया होया माझे मालवे ते दुआबे दे अंदरों नौजवान बहादुर सूरमे सुनेह भेज के इस आनंदपुर साहब की धरती से बुलाए ने। सिख आपो अपने साथ शस्त्र ते हथियार लोड़ीदा समान लेके आनंदपुर साहब की धरती से पहुंच चुके ने। दोवे दल आमो सामने हुए, इस दी ताकत सी यक लखत हल्ला बोल के साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी दीआं फौजां दे उत्ते जेतू हो जाए। मुंह तोड़वा जवाब गुरसिखां दे वल्लों मिलिया, अपने कदमे ना पिछे हटाए। मुकदी गल कई महीने दा घेरा लम्मा हो गया, अखीरले समय तक हार हंब चुके ए बाई तार पहाड़ी राजे ते मुगल बादशाह दीआं चारे हिस्से दीआं फौजां पहुंचियां होईआं। इन्हां ने व्योधबंदी अनुसार तरला लै के कुरान की कसम खा के स्नेहा दे के आख्या, दातार जी साडी इज्जत दा सवाल है, कई महीने हो गए घेरा पिया होया, इस करके असीं बेनती करदे आं जे तुसीं आनंदपुर साहिब दे किले नूं कुछ समय वास्ते छड जाओ असीं तुहाडे उत्ते हमलावर नहीं होवांगे, सिर्फ असीं दुनिया नूं मूंह खोण जोगे रह जावांगे कि असीं आनंदपुर साहिब दा किला खाली करवा लिया। मेरे गुरदेव सतगुरु इन्हां सारियां चालां नूं चंगी तरह समझदे सन। अज मेरे दातार जी ने कुछ खतना दे उत्ते कई महीनों का इन्हां किलों के अंदर पिया होया कुछ कूड़ा भर के बाहर तोड़ दित्तियां, रात दे हनेरे अंदर जगदियां होईयां मिसालां जांदियां वेखियां, लुभाएमान होया दिल इन्हां फौजां दा, और गुरु का खजाना जा रहा है, इन्हूं किवें लंघ दिता जाण, किवें लंघ दिता जाए। कुछ भी गल हमलावर होके आण पए पर कुछ भी पल्ले ना पिया नमोशी तो अलावा। जेड़े सिख नाल तुरे सन ऐसा जे वापस किले दे अंदर आण दाखिल होए। पर अज भी मैं गल करां 1704 दे अंदर 6 ते 7 पोह दी मलवी रात दसंबर दा महीना कहना दी अत दी पैंदी होई सर्दी विच मेरे गुरुदेव सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने आनंदपुर साहिब दा किला छड दिता। अजे साहिब जी सरसा दे किनारे तक नहीं पहुंचे, कीरतपुर साहिब तो लगभग 6 मील दा सफर है। इन्हां बाई तार पहाड़ी राजे ते मुगलिया हुकूमत दीआं फौजां ने अपनियां खादियां होईयां कसमां नूं छिके ते टंग के मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज ते हल्ला बोल दिता है। आओ सरसा दे विच वेखिए, जिथे बरसात होण कारण पहाड़ा दे विच इस सरसा दे अंदर तेज पानी दा बहा चल रहा है, भरिया चलदा है सरसा नाला। अगेरे सरसा दे पानी तेज बहा है ते मगर दुश्मन दल जेड़ा खून पीण वास्ते काला है मारो मार कर दे, किते जय देवा दे नारियां दी आवाज आउंदी है, किसे पासे अली अली दे नारे गूंजदे होए नजर आ रहे सन, मगर दुश्मन दल है अगे सरसा रस्ता रोक के खड़ी है। पर धन गुरुदेव सच्चे पातशाह महाराज जी ने इसो सरसा नूं पार करन लग्या की कुछ वापरिया, मेरे सतगुरु ने की हुक्म दिता है, इसे मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह दे परिवार गुरसिखां दे नाल की कुछ वापरिया, उस वेले दा नक्शा ताडी जत्था इन्हां अखरां विच हे इहो कह रहा।

0: ओ मथा ठंडा हो गया कुदरत के कारे, ओ मथा ठंडा हो गया कुदरत के कारे, ओ मथा ठंडा हो गया कुदरत के कारे, ओ
1: सारी संगत सतगुरां नूं सीस झुकाओ, गज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। ये तां आप गुरु समर्थ कलगीधर दातार सच्चे पातशाह आ पहुंचे ने, और गुरु का सिख सतगुरां दा नाम लैके बलदी भट्ठी विच बह जाए ते सेक नहीं लगदा। मीरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी का अनन सेवक जिन्हों सतगुरां ने घुट के छाती नाल लाया ते वचन कीता सी, बाबा बिधी चंद सीना गुरु का सीना। गुरसिखो पट्टी दे मिर्दियां दे महला विचों जेड़े संगत कोलो इना खोए हुए दुशाले सन, वो अपने ढंग तरीके दे नाल लैके जदों महला तो बाहर आ गए, पता लग गया बिगड़ बच गया, फौजा ने नाकाबंदी कर ली चार चुफेरे। बाबा बिधी चंद ने एक पटियारे नूं आख्या, कोई थां है जिथे कुछ समा इस पुलिस इस फौज दीआं नजरां तो ओहले होके बह जावां। पठियारे ने आख्या, मित्रा मेरे कोई एहो जिहा थां नहीं, सिर्फ बल दा पाठी है। बाबा बिधी चंद ने गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी दे चरणा विच करके अरदास इस पट विच बह गए ते शब्द पढ़दे ने ओट लै ली, गुरु दी ताती वाह ना लगई पार ब्रह्म शरणाई चौगिरद हमारे रामकार दुख लगे ना पाई। अज गुरुद्वारा पाठ साहिब जिला तरन तारण साहिब पट्टी शहर दे विच सुभायमान है। अज गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी दे पोतरे साहिबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज आप इस स्थान ते पहुंचे। करिंदियां ने अपने वालों चलाकी दी भरी गल करदे आख्या, महाराज सिर्फ आ पठा है, मेरे साहिब दातार जी ने घोड़े दा रुख उस पासे नूं कीता, चलदा होया घोड़ा पठे दी छाती ते जा खड़ा है। जदों साहिब जी दे उस घोड़े ते पौड़ लगे, इतिहास कहिंदा है तपदा होया पठा जिहड़ा सी ऐन शात ठंडा सीत हो गया, बल दे अंगार ओह वी अज बर्फ वर्गे बन गए। जदों इह निराला कौतक इह चोज इस पठे ते कम करन वाले करिंदियां ने नौकरां ने वेख्या, इन्हां दी हैरानी दी कोई हद ना रही, दिल अंदर पछतावा उठिया, मना कानू ऐसा कीता, इह तो कोई वली है, इह कोई रब दा प्यारा सचमुच ही खुदा दा रूप है, असी पहचान नहीं सके, असी दिल विच श्रद्धा नहीं ला सके, ऐसा वचन कीता की होवेगा। इन्हां विचारां नूं लै के दौड़ के गए इस पट्ठे दा मालक जी दा नाम है निहंग खान। प्यारे गुरसिखो, मैं अक्सर बेनती करिया करदा, इस संसार दे अंदर कदे कोई भी कौम नहीं माड़ी, भावे ओह इस्लाम धर्म होवे, भावे हिंदू धर्म होवे, चाहे कोई भी होवे, प्यारे गुरसिखो कदे कोई कौम नहीं माड़ी होया करदी, कौमां विच कुछ बंदे माड़े होया करदे ने। अज तक जेड़ा इस पट्ठे दा मालक है जिहदा नाम है निहंग खान, उस दे करिंदे उस दे नौकर दौड़ के उहदे घर दे विच जा पहुंचे ने। इस निहंग खान नूं मिले, हथ जोड़ के अदब दे नाल कहण लगे, अज तां जी अचंभा हो गया है, अज तां हैरानी वाली गल हो गई है। निहंग खान ने आख्या, दसोगे सही होया की है? इन्हां आख्या, खान साहब की दसीए, अज अपनियां फौजां दे समेत एक कोई खुदाई नूर आण पहुंचा, असी तां नहीं पहचान सके। उन्हें आण के साडे पास इस गल का जिक्र किया भी कोई थां कोई टिकाणा ऐसा है जिथे कोई समा टिक रहा जाए, पर असी इस गल नूं ना समझ के पट्ठे वाले इशारा कर दिता। उस साई उस मालक जिस दा चलदा होया घोड़ा उस पट्ठे की छाती की हिक ते जाके अपने पौड़ ला दिते ने, वो तपदा होया पट्ठा जिहड़ा ठंडा ठार हो गया। असी इस हैरानी दे विच पए होए आ, तां दौड़ के तुहाडे कोल आए आ। इह गल सुनी निहंग खान ने, कौन होवे ऐसा जिस ने आण के चोज वरता दिता होवे। मन अंदर बार बार ख्याल आउंदा है, आनंदपुर साहिब की धरती ते घेरा पिया तां कई महीने हो गए ने, अज कोई भाणा ऐसा वापरिया होवे ना, जाना साहिबे कमाल कलगीधर दातार सच्चे पातशाह महाराज इस पासे नूं आ गए होण। याद रखियो मेरे गुरुदेव सतगुरु सच्चे पातशाह दी बाबत एडी

मेरा बापू मरदा नहीं, मैं यतीम नहीं हूंगा, दुनिया के लोग मैं एक गल दसना चाहना, मेरा बापू मरदा नहीं इसलिए क्योंकि मैं उनकी संतान हाँ, इसलिए मैं भी मिटदा नहीं। मेरे मित्र उन्होंने भी सुख मंगना, नीत हमारे सब सुखवासी। ख्याल करियो बाणी की शब्दावली नू बड़ा रुक के समझना है, इन्दे विच बड़ी वड्डी फिलासफी छुपी है। बापू दा पुत्र दा कोई रिश्ता है, ते इस किस्म दा रिश्ता है जिन्दे विच घर एक हुंदा है, खजाना एक हुंदा है, सुभा एक हुंदा है। और एक ख्याल करियो मित्र दा भी एक रिश्ता है जिंदे विच घर एक होना कोई जरूरी नहीं हुंदा। बाप दा घर पुत्र छड़ जाए दुनिया दे लोग सोची पै जानगे कि इनकी बाप नाल बनी नहीं, कोई इख्तलाफ हो गया, सुभा नहीं मिले, कोई झगड़ा हो गया, की कारण है पुत्र ने बाप का घर छड़ दिता है। पर ख्याल करियो मित्र तो पहले ही वख रहा, कोई जरूरी नहीं वो एक घर में रहा हो, कोई जरूरी नहीं एक महल्ले में रहा हो, कोई जरूरी नहीं एक देश में रहा हो, कितने भी रहने वाला कोई मनुख मित्र हो सकता है। दो भरा वख वख घर में रहते हो, लोग सोचते हैं भरा वख हो गए ने, पर दो मित्र वख वख महल्या में भी रहते हो, कभी किसी ने सोचा ये एक घर में क्यों नहीं रहते। मित्रों की दुनिया बड़ी वसी है। गुरु ने ख्याल दिता है, कहते ने मेरा बापू चिरंजीव है मरदा नहीं, मैं उनकी संतान हाँ इसलिए मैं भी मिटदा नहीं। मेरे मित्र भावे किसी मोहल्ले किसी शकल में रहते हो, दो भरावान की शकल ना मिलती हो लोग सोची पैणगे, दो मित्रों की शकल रंग ना मिलता हो कोई फर्क नहीं, उन्होंने जिंदगी का रिश्ता केवल वफादारी से है। कोई मित्रों की शकल ना मिलती हो किसी कोई शिकवा नहीं, क्योंकि उन्होंने जिंदगी का रिश्ता केवल वफादारी से। मित्र एक दूजे का वफादार होना चाहिए, दुख सुख का भाईवाल होना चाहिए, बस इना ही रिश्ता, इना ही संजोग, इनी गंढ काफी है। गुरु आखते ने कहते ने मेरा पिता चिरंजीव है मैं भी मिटदा नहीं, पर दुनिया के लोगों मैं ते दुनिया नाल भी इना सांझ ते प्यार रखना चाहना, कोई मेरा वफादार होवे सही, मेरे दुख